एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि तदनुसार 24 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है। Expanded
1: commercial ties. अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

ईश्वर को पाने के लिए मंदिर नहीं निर्मल हृदय चाहिए। ईश्वर की अनुभूति किसी विशेष स्थान, मूर्ति या विधि तक सीमित नहीं है। जब हमारा मन शांत, सरल और निर्मल होता है, तभी हम सच्चे अर्थों में परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। रोज सुबह जब हम आंखें खोलते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर झांकते हैं कि क्या हमारे हृदय में किसी के लिए द्वेष, जलन या घृणा है। अगर है, तो उसे प्रेम, क्षमा और करुणा में बदलें। यही एक निर्मल हृदय की शुरुआत है। जब मन साफ होता है, तो जीवन भी स्वच्छ, शांत और आनंदमय लगता है। यह एक ऐसी सुबह की तरह है जो न केवल तन को ताजगी देती है, बल्कि आत्मा को भी प्रसन्नता से भर देती है। तो आइए इस दिन की शुरुआत एक निर्मल हृदय और शुभ विचारों के साथ करें। यही सच्चा ईश्वर मिलन है। चिंतन के बाद अब समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का।

त्रिनेत्रधारी शंकर भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान शिव का नाम मात्र समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। भगवान शिव की आराधना करने से परम सुख प्राप्त होता है।

भक्ति आत्मा का परम सुख है। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है तो उसे एक अनोखी शांति और आनंद की अनुभूति होती है। सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन भक्ति का आनंद शाश्वत और अटूट होता है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 6:40 होने को हैं। समय है एक और भक्ति रचना श्री रामचरितमानस गान का।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिवजी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे जड़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्री राम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का भाग 98। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुप्रभात में आज विशेष के साथ बात होगी राष्ट्रीय मंडल दिवस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के बारे में, रमणीक स्थल पराशर झील के बारे में बात की जाएगी और पर्यावरण में राम चिरैया किंगफिशर के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। सात बजकर 7:40 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीत लोकगीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। सुबह 8:30 पर सुबह 9 आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्यम, जिसमें आज का विषय है नशा और मानसिक स्वास्थ्य। और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर अरविंद कन्वर। सुबह 10 सुनिएगा फिल्म संगीत और 10:30 पर हिमाचली गीत लोकगीत प्रसारित किया जाएंगे। संगोष्ठी का समय रहेगा दिन में 11:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 11:30 पर और 12 समय होगा फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा, नन्हे बच्चे सुनेंगे और इसमें बातचीत का विषय होगा राष्ट्रीय मंडल दिवस और साथ ही रोचक जानकारियां भी साझा की जाएंगी। दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनेगा फिल्मों से भजन। शाम 5:30 कार्यक्रम युवा मंच में आज आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम मेरी पसंद। शाम 6:06 पर गजलों का लुत्फ उठाइएगा और शाम 6:30 पर कार्यक्रम मिंजरा प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:10 पर कार्यक्रम किसान वाणी में जानकारी का विषय होगा गर्मी के मौसम में पशुधन की देखभाल। साथ ही होंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, भेंट वार्ता और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत। रात्रि 8 आकाशवाणी शिमला से सुनिएगा, माफ कीजिएगा, रात्रि 8 विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस और 8:15 पर आकाशवाणी शिमला से हिमबीट्स कार्यक्रम रिले किया जाएगा। रात्रि 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे और रात्रि 9:15 पर एक ही कलाकार के अंतर्गत निर्माता निर्देशक अनुराग बसु की निर्देशित की गई फिल्मों से कुछ चुनिंदा गीत आपके लिए लेकर आएंगे। रात्रि 9:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा और रात्रि 10 से 11 तक रवि बासरीय संगीत सभा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20 पर, 11 दोपहर 3 शाम 6 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 न्यूज़ 8:09, दोपहर 1 शाम 5 शाम 7 और रात्रि 11 हिंदी में समाचार और दोपहर 1:05 पर, शाम 5:05 पर, शाम 7:05 पर और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी तमाम जानकारी आज की सभा में प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: एकादेशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमंत्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारी अमेरिका विदेश मंत्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा संपर्क शिक्षा पारस्परिक जनसंबंधादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरंतर प्रगतेः विषये प्रधानमंत्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शांति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शांतिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणां एकेन प्रतिनिधिमंडलेन सह कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्ष पर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय पूर्वीय मध्य प्रदेशाय विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामी 7 पर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं मुंबय्याम् अपराह्णे 3:30 मुंबई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वंद्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $70 अरब तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. External Affairs Minister Dr.

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुप्रभात में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हर सुबह एक नई शुरुआत है और हमें हर सुबह की शुरुआत मुस्कान से करनी चाहिए। मुस्कान दिल का संगीत है, इसे हर रोज़ बजने दो। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना जानता है, वह जीवन की सबसे बड़ी ताकत को जानता है। और हाँ, सबसे अहम बात, मुस्कान देना सीखो, क्योंकि इससे ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि दूसरों का दिन भी अच्छा बनता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह एक उत्सव हो, हंसी और खुशी से भरपूर। खुश रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों, क्योंकि यह जीवन हमें बार बार नहीं मिलता। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और तलत महब के गाए इस गीत के साथ।

दोस्तों, आज की तारीख है 24 मई और आज हम जानेंगे कि क्यों इतिहास के पन्नों में यह दिन इतना खास दर्ज है। 24 मई की तारीख दुनिया भर के संचार और विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती है। साल 1844 में इसी दिन वैज्ञानिक सैमुअल मोर्स ने वॉशिंगटन से बाल्टीमोर के बीच दुनिया का पहला सफल इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ संदेश भेजा था। इस संदेश ने दुनिया में आधुनिक संचार की नींव रखी। अब हम बात करते हैं शिक्षा जगत की। देश में आधुनिक और मुस्लिम शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों में से एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना आज ही के दिन 24 मई 1920 को हुई थी। महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान द्वारा 1877 में स्थापित मुहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। आइए अब हम उन महान हस्तियों को याद करें जिनका जन्म और निधन आज के दिन हुए। विज्ञान जगत को अपनी क्रांतिकारी खोज हेलियोसेंट्रिक थ्योरी देने वाले महान पॉलिश खगोलविद निकोलस कोपरनिकस का निधन 24 मई 1543 को हुआ था। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी गुरु हनुमान का निधन 24 मई 1999 को हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन की याद में पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में राष्ट्रमंडल दिवस कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। इसके साथ ही माउंट एवरेस्ट की फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पॉल का जन्म भी आज ही के दिन 24 मई 1954 को हुआ था। इसके अलावा प्रसिद्ध बांग्ला कवि काजी नजरुल इस्लाम का जन्म 24 मई 1899 को आज ही के दिन हुआ था। इतिहास की इन्हीं खट्टी मीठी और प्रेरणादायक यादों के साथ सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं के लिए।

श्रोताओं, आज का दिन बहुत खास है। आज हम एक ऐसे वैश्विक उत्सव का जश्न मना रहे हैं जो हमें इतिहास के पन्नों से जोड़ता है और भविष्य के साझा सपनों की ओर ले जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे की। बिल्कुल, आज का दिन उन सभी देशों के लिए बेहद खास है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे, लेकिन आज स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस दिवस की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल इसकी नींव जो है वो महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस 24 मई 1819 के उपलक्ष में रखी गई थी। शुरुआत में इसे एम्पायर डे, साम्राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन समय के साथ बदलते वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए साल 1958 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया। दुनिया भर में इसे अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में यह मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, जबकि भारत समेत कई अन्य देशों में इसे 24 मई को मनाने की परंपरा है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि राष्ट्रमंडल के 56 सदस्यों और इनके देशों के बीच एकता, शांति, लोकतंत्र और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देना है। आज के दौर में जब दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, तब इन सदस्य देशों का एक साथ आना और जलवायु परिवर्तन से लेकर लैंगिक समानता जैसे जरूरी मुद्दों पर काम करना इस दिवस को और अधिक प्रासंगिक बना देता है। राष्ट्रमंडल दिवस के इस खास मौके पर हम सब मिलकर एक बेहतर और समावेशी भविष्य की कामना करें। तो चलिए, वक्त हो चुका है एक और खूबसूरत से गीत को सुनवाने का जो आपको ऊर्जा भर देगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही साथ गुनगुनाते रहिए।

0: टिक टिक टिक टिक
1: टिक टिक टिक टिक
0: टिक टिक टिक टिक
1: टिक टिक टिक टिक
2: चलती जाए घड़ी।
3: कार्यक्रम सुप्रभात, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपने रेडियो दोस्त रेनू मनकोटिया के साथ। जी हाँ, आज का दिन हमारी धरती के एक बेहद खास और अद्भुत जीव के नाम है। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 7:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हिमाचली गीतों लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रयाग। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 7:55 और 54 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ रिले किए जाएंगे।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।

0: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
6: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और

0: विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटना स्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरतनाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्य में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नव भारत टाइम्स अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
4: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
3: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared US perspective on various regional and global issues including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio called India a vital partner to the United States. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing Company, Jeff Shockey, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation in aviation and aerospace manufacturing. He added that the meeting also followed discussions focused on developing maintenance, repair and overhaul opportunities, skilling, supply chains, innovation and growing India's role as a trusted global manufacturing and engineering hub. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister JP Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme Swasthya Sathi will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The memorandum of understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendras in West Bengal from the existing 117 to 469. The Chief Minister also said that proposals for new medical colleges in Alipurduar, Kalimpong and South Dinajpur districts as well as a new AIIMS for North Bengal have also been sent to the central government. In Maharashtra, a 1,500-page charge sheet has been filed by the state special investigation team before a court in Nashik in connection with the alleged sexual assault and attempted religious conversion case linked to a TCS facility in the city. According to SIT Chief Sandeep Mitke, the charge sheet was filed yesterday against four accused, Martin Patel, Nida Khan, Danish Sheikh and Tosif Athar. He said additional charge sheets related to 7 to 8 persons connected to offences are expected to be filed within the next 3 to 4 days. Police said the first case in connection with the matter was registered at the Deolali Camp Police Station on the 25th of March. Officials further stated that 2 cases have been registered against Nida Khan, while 6 to 9 cases each have been registered against the other accused. Health and Family Welfare Minister JP Nadda has said that along with healthcare infrastructure, training of health experts and medical professionals is equally important. He made these remarks while addressing the 23rd convocation ceremony of the National Board of Examinations in Medical Sciences in New Delhi yesterday. Mr. Nadda emphasized that doctors serve as the software of the healthcare system, while infrastructure and other facilities function as the hardware for the nation.
5: We as policymakers give you infrastructure, but that is only going to remain as a hardware. The software is the doctor. The software are the people who are working in the field of health. I'm also happy to note that today we have started 11 new courses. I really congratulate NBEABS for this initiative that they have taken.
3: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. The government has published draft rules under the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. Our correspondent has the details.
6: The Viksit Bharat G. Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. The ministry said that the draft rules, including transitional provisions rules, national level steering committee rules, Central Gramin Rojgar Guarantee Council rules, administrative expenses rules and grievance redressal rules have been placed in the public domain for consultation. The new act places strong emphasis on timely, transparent and accountable wage payments. The Act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The VBG Ramji Act 2025 was notified on the 11th of this month for commencement across all the states and union territories with effect from 1st of July this year. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
3: US President Donald Trump said that a deal with Iran, including opening the Strait of Hormuz, has been largely negotiated after calls with Israel and other allies in the region. Announcing progress on his Truth Social platform, Trump said final aspects and details of the deal are being discussed and will be announced shortly. President Trump said he had spoken with leaders from Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain, along with Israel. Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai earlier told state television that the US and Iranian positions had been converging in the last week, but warned it did not mean agreements would be reached on key issues, and accused the Americans of contradictory statements. A ceasefire in Iran was agreed on 8th of April, and since then, Washington and Tehran have engaged in talks over a long-term peace deal. In the United States, a person who opened fire near a White House security checkpoint was shot dead by Secret Service officers after they returned fire. The Secret Service said in a preliminary statement posted on X that the suspect near 17th Street and Pennsylvania Avenue pulled a weapon from his bag and began firing. Officers responded by opening fire, injuring the suspect, who was later declared dead at a hospital. The suspect was identified as a 21-year-old man, according to a law enforcement official. A bystander was also injured in the incident. U.S. President Donald Trump was inside the White House at the time of the incident. This was the third gunfire-related security incident near the president in the past month. President Draupadi Murmu will present Padma Awards for the year 2026 at the Civil Investiture Ceremony tomorrow. On this occasion, we bring 16 programs as part of our series, People's Padma on Akashwani. In these episodes, you would get an insight into the work and life of Padma awardees. These episodes would be broadcast today and tomorrow on 100.1 Akashwani Gold. It can also be heard on News on EIR app and News on EIR official YouTube channel. Stay tuned to Akashwani today and tomorrow from 9:10 a.m. onwards. The India Meteorological Department, or IMD, has forecast severe heat wave conditions today in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha. Similar weather conditions are also likely in places over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana, West Madhya Pradesh and West Uttar Pradesh. The weather agency also predicted heavy rainfall today in parts of Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. In Meghalaya, a vibrant musical evening was held last evening at the State Convention Hall in Shillong to mark the 90 years of Akashwani's service to the nation as a public broadcaster. Jointly organized by Akashwani Shillong and Akashwani Northeastern Services, the musical evening featured dynamic performances by leading artists and bands of Meghalaya. On to sports, Gurinder Veer Singh has clinched the gold medal in the men's 100-meter event at the 2026 Athletics Federation Cup in Ranchi with a new national record timing of 10.09 seconds. He improved his previous personal best of 10.17 seconds and comfortably surpassed the Commonwealth Games qualification mark of 10.16 seconds. Animesh Kujur secured the silver medal with a timing of 10.2 seconds, while Pranav Pramod took bronze, clocking 10.29 seconds. In the men's 400-meter event, Vishal TK won the gold medal with a new national record of 44.98 seconds, becoming the first Indian athlete to break the 45-second barrier in the event. And in IPL cricket, riding an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in Lucknow last night. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
7: Thank you, Anuja. The visit of US Secretary of State Marco Rubio and his meeting with Prime Minister Narendra Modi has been prominently covered by most of the newspapers. PM backs peace push with renewed push to repair ties in meeting with Rubio is a front page headline in Hindustan Times, while the Tribune writes, India flags energy crisis. State Secretary tows US oil, extends Trump's invite to Modi to visit White House. Another headline in Hindustan Times says, headway in Iran-US talks raises truce hopes. Quoting Defense Minister Rajnath Singh, a Sunday Pioneer headline says, India to be biggest weapon exporter in 25-30 years, adding the government wants private sector share in defense production to rise to 50%. The Hindu reports on new law Viksit Bharat Ji Ramji replacing the 20-year-old MG Narega set to come into effect from 1st of July with draft rules open for feedback till 3rd week of June under the headline Big Poor States to get higher funds under government's new rural job scheme. Hindustan Times editorial writes how Sikkim showcases a thoughtful vision of development while respecting tradition and an exemplary social harmony to its education sector, opening the doors to the future. More red, white and blues for green card applicants, states the Economic Times, as new policy for US immigration may force permanent residency seekers to return home for paperwork. And finally, the Sunday Times reports that only 6 states now have fertility rate above replacement level. The paper refers to latest sample registration report of 2024. And with that, it's back to Ganucha.
3: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. H. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik DCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinder Veer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
8: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर. सुबह के 8:23 हुए हैं. आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत. फिल्म संगीत सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार. कार्यक्रम का आगाज आज हम कर रहे हैं एक रिश्ता फिल्म से. इस गीत को गाया है कुमार सानू अलका याग्निक ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने.

जी हाँ, ये संगीत है हिमेश रेशमिया का। आवाजें हैं सोनू निगम, जयेश गांधी और अमृता कक्कड़ की। मैंने प्यार क्यों किया, इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सिट्स पर।

ये संगीत है अनु मलिक का। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर, और ये गीत हमने लिया है कृष्णा फिल्म से। फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया के साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 9 बजने को हैं, आइए

अब सुनते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्यम, जिसमें आज का विषय है नशा और मानसिक स्वास्थ्य। और इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर अरविंद कंवर, और इनके साथ बात की है वंदना रैना ने, कार्यक्रम निर्माता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना रैना। जी श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं आपके तन और मन दोनों के स्वास्थ्य की। और आज कार्यक्रम में जानकारी का विषय है नशे के पीछे छिपा मन का दर्द। नशा एक ऐसा शब्द जो केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है, विशेषकर आज के समय में जब युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय बनती जा रही है। और हिमाचल जैसा शांत और सुंदर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। आखिर लोग नशे की ओर क्यों बढ़ते हैं? क्या ये केवल एक आदत है या इसके पीछे कोई गहरा मानसिक संघर्ष छिपा होता है? कैसे पहचाने शुरुआती संकेत और सबसे महत्वपूर्ण इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक डॉक्टर अरविंद कंवर, जो हमें नशे और मानसिक स्वास्थ्य के इस गहरे संबंध को समझाने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम आरोग्यम की शुरुआत और जानते हैं कैसे नशे के अंधेरे से निकलकर जीवन को फिर से रोशनी की ओर ले जाया जा सकता है। तो सबसे पहले स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर अरविंद कंवर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद, नमस्कार। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। मैं डॉक्टर अरविंद, अभी सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है वो है नशा और मानसिक स्वास्थ्य। नशा केवल एक व्यक्ति की आदत या कमजोरी नहीं बल्कि एक शरीर, मन और परिवार और समाज को प्रभावित करने वाली एक समस्या है। अक्सर लोग तनाव, अकेलापन, उदासी, चिंता, नींद की समस्या के लिए किसी न किसी किस्म के नशे को, जैसे शराब, तंबाकू, भांग, चिट्टा, इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत में कुछ राहत भी मिलती है लेकिन धीरे धीरे इन नशा मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे ये कहा कि हम धीरे धीरे इस नशे की लत हमें लगती है और अक्सर हमने देखा है कि हमारा जो सोसाइटी है उसमें लोग यही कहते हैं कि बस हम तो शौक के लिए करते हैं, हमें आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनका ये जो शौक है वो कब लत में बदल जाता है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। तो ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नशा जो है, चाहे वो शराब का हो या फिर दवाइयों का हो या किसी भी तरह का हो, ड्रग्स का भी हो, तो वो मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करता है?
1: देखिए, कई बार हम मान के चलते हैं कि नशा केवल एक बुरी आदत है।
0: जी,
1: नशा केवल एक बुरी आदत नहीं, ये एक स्वास्थ्य की, एक हमारे दिमाग की व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करने वाली एक स्वास्थ्य समस्या है।
0: जी।
1: जैसे हम हार्ट की बीमारी को एक बीमारी मानते हैं, वैसे ये भी एक किस्म की बीमारी ही है और जिसका इलाज हमारे पास है। तो अगर टाइम से कोई मरीज, कोई पेशेंट हमारे पास पहुंच जाए तो उसका टाइम से इलाज किया जा सकता है।
0: जी, और अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की हमारी जीवन शैली है या आज का जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तनाव बहुत से युवा जो साथी हैं उनको रहता है। और एक और चीज है कि एकल परिवार हो गए हैं, तो ऐसे में वो अकेलापन महसूस करते हैं या कई बार वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, तो उन्हें टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, अवसाद हो जाता है, तो ऐसे में वो नशे की तरफ चले जाते हैं। तो आपका क्या कहना है इस विषय पर कि नशे के पीछे जाने का उनके जो कारण है वो ये है कि उनके दिमाग में कोई अनकहा दर्द है?
1: जी, कई बार काफी सारे मरीज जो होते हैं हमारे, वो जब पहली बार नशा शुरू करते हैं तो किसी मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं, नींद की दिक्कत से जूझ रहे होते हैं, कई और कभी उदासी रहती है, कभी किसी में एंजाइटी के सिम्टम्स रहते हैं, उसके बाद वो नशा शुरू करते हैं। इनिशियली शुरू में उनको कुछ आराम भी मिलता है लेकिन जैसे जैसे वो नशा बढ़ता जाता है वो उनके लिए और आसपास वालों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है।
0: जी, और आप ये बताइए कि जैसे कोई व्यक्ति नशा करना शुरू करता है तो परिवार को कब अलर्ट हो जाना चाहिए कि हाँ उनके परिवार में कोई सदस्य है वो इस गलत आदत की तरफ जा रहा है, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो उसका अलार्मिंग अलर्ट का काम करते हैं?
1: ठीक है, इसके कई सारे ऐसे छोटे छोटी चीजें हैं जो घर वाले नोटिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में है, तो वो पढ़ाई में पहले अच्छा था, एकदम से पढ़ाई में दिक्कत आने लग पड़े, घर लेट आ रहा है, उसके काफी सारे मूड स्विंग्स हो गए, चिड़चिड़ापन, कभी खुश है और नेक्स्ट मोमेंट में एकदम से गुस्सा करता है, घर आता है तो कपड़ों से कुछ स्मेल आती है या फिर आंखें लाल रहना, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। पैसे ज्यादा मांगना, दोस्तों के साथ ज्यादा घूमना, ये सब कुछ कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं उस चीज के, तो इसमें फिर परिवार को थोड़ा गौर करने की जरूरत है।
0: जी, और जब कोई युवा व्यक्ति जो है वो नशा करना शुरू करता है तो शुरू में तो उसे मजा आता है लेकिन बाद में धीरे धीरे, अब आप ये बताइए कि उसके मन और मस्तिष्क पर उनका क्या असर पड़ता है और किस तरह की समस्या समस्याएं जो हैं वो उसमें उत्पन्न होने लगती हैं?
1: देखिए, कोई भी जब नशा शुरू करता है तो वो उसको एक जो हमारी लैंग्वेज में हाई मिलता है, एक अच्छी फीलिंग आती है, जो कि कुछ टाइम के लिए होता भी है। कई लोग इससे अपने कोई मानसिक तनाव है उससे जूझने के लिए उसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो ये नशे हैं अगर आप ब्रेन के लेवल पे जाएं तो हमारे जो रिवॉर्ड पाथवे पे उस पे काम करते हैं कि कोई भी किसी भी चीज के लिए अगर आपको एंजॉय करना है, जैसे आप लोगों के साथ फ्रेंड्स के साथ घूमना एंजॉय करते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं, तो धीरे धीरे नशा उस चीज को हाईजैक कर लेता है। तो अब कोई भी अगर आपको जिंदगी में कुछ भी मजा चाहिए, कुछ भी एंजॉयमेंट चाहिए, तो आपको पहले उसके लिए नशा चाहिए। तो इस तरीके से वो लाइफ की एक रिक्वायरमेंट बन जाता है। तो धीरे धीरे धीरे जब तक नशा नहीं मिले तो फिर उनको काफी सारे विड्रॉल सिम्टम्स होने लग पड़ते हैं।
0: जी, और नशा करें अगर लंबे समय तक तो ऐसे में जो पर्सनैलिटी है किसी व्यक्ति की वो किस तरह से प्रभावित होती है?
1: देखिए, जब काफी टाइम से कोई नशा कर रहा हो तो पर्सनैलिटी पे काफी सारे चेंजेस नोटिस किए जा सकते हैं, जैसे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, कभी कभी जैसे कुछ लोग भांग या शराब ज्यादा लेते हैं तो उनको अकेले बैठ के आवाजें आने लग पड़ती हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कोई उन्हें मारने आ रहा है, जिसको हम साइकेट्रिक मेडिकल टर्म्स में हैलुसिनेशन और डिल्यूजन कहते हैं। तो ये सब अलग अलग किस्म की स्वभाव में जो चेंजेस हैं वो घर वाले नोटिस कर सकते हैं।
0: जी, और कई बार ऐसा होता है कि परिवार का अगर कोई व्यक्ति नशे की आदत में है तो परिवार जो है वो उस चीज को छुपाना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये सोसाइटल जो प्रेशर रहता है सोसाइटी का कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा जो है घर का वो इस नशे की आदत में आ गया है तो परिवार का क्या रोल रहेगा, क्या भूमिका रहेगी?
1: देखिए, आज भी जो खासकर मानसिक बीमारियां और नशे की बीमारियां, उनके साथ एक स्टिग्मा है सोसाइटी में, उनको एक ऐसी नजर से देखा जाता है कि ये नशे करता है। तो सबसे पहले जब परिवार को इस चीज के बारे में पता चलता है तो उनको ये चीज समझ होनी चाहिए कि ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज है, और सबसे पहले उनको ये चीज समझ होनी चाहिए कि वो जो बच्चा है वो क्यों कर रहा है, ये चीज समझने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद इसके लिए हेल्प है ना, इसके लिए अगर मदद चाहिए तो हमारे पास साइकेट्रिक फैसिलिटीज हैं आसपास, तो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाके कंसल्ट करें कि आगे क्या किया जाए।
0: जी, और कई बार ये होता है कि कोई व्यक्ति है वो खुद भी नशा छोड़ना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं उसे झिझक होती है कि अब उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या कोई जान पहचान वाला उसे पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसे शर्म लगती है ये चीज बताने में, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, काफी सारे ऐसे मरीज आते हैं जो खुद नशे से इतना ज्यादा तंग हो गए होते हैं कि वो खुद से नशा छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पाते हैं। हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि वो खुद से मदद लेना चाहते हैं। उसमें जो चीज आती है कि थोड़ा सोसाइटी का जो स्टिग्मा है कि नशे करता है, वो चीज आ जाती है बीच में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें, जो नशा छोड़ने से जो फायदा होगा वो जो बाकी जो स्टिग्मा है उससे जो नुकसान होगा उससे तो ज्यादा ही है ना। तो फिर इस चीज के लिए बेटर है कि वो कंसल्ट करें आसपास। इसके लिए टेलीमानस सर्विसेज हैं हमारी, उनसे कंसल्ट कीजिए। ई संजीवनी है जो हम ऑनलाइन ऐसे कंसल्टेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं,
0: जिसमें अपनी आइडेंटिटी बिना हाईलाइट किए आप जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार छोड़ना जी। और सबसे पहला स्टेप क्या होगा अगर कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है?
1: देखिए, सबसे पहले तो अपने फैमिली मेंबर से ओपन अप हों, इस चीज के बारे में डिस्कस करें कि ऐसा नशा है और मैं छोड़ना चाहता हूँ। उसके बाद फैमिली भी एक सजग होके एक समझदारी से इसको करे कि ये मतलब उनको नकारने की बजाय ये समझे कि ये एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज है। कई लोग इलाज के लिए पहले इधर उधर जाते हैं बट इसका जो इलाज है वो दवाइयों से और साइकोथेरेपी से ही होता है। इसके लिए बेटर है कि आप आसपास जो भी आपके साइकेट्रिस्ट हैं उनसे जाके कंसल्ट कीजिए। फिर उसके बाद जो साइकेट्रिस्ट हैं कुछ बात करेंगे, कुछ समझेंगे, फिर उसके बाद मरीज के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ बात करके कि दवाई शुरू करनी है या सिर्फ साइकोथेरेपी पे रखना है वो डिस्कस किया जाता है।
0: जी, और डॉक्टर साहब, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नशे की प्रवृत्ति है क्या वो जेनेटिक है, आनुवांशिक है, या फिर परिवार का कोई जो सदस्य है, अगर एक व्यक्ति नशा करता है तो क्या जो बाकी छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये संभावना बढ़ जाती है कि वो भी नशे की आदत को अपना लेंगे?
1: जी, ज्यादातर मानसिक बीमारियां और इसमें नशे की बीमारी भी आती है। ये एक कुछ उसमें जेनेटिक है लेकिन कुछ सोसाइटी का एस्पेक्ट भी है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बायो साइकोसोशल मॉडल कहते हैं। बायो मतलब कुछ जेनेटिक कॉम्पोनेंट है जो आपको पेरेंट से मिलता है, और साइकोसोशल मॉडल मतलब जो आसपास की सोसाइटी का, आप जिस पर्यावरण में बड़े हैं उसका भी कुछ इफेक्ट होता है। तो वो सब कुछ मिलके एक इंसान की ना सिर्फ नशे बट किसी भी मानसिक बीमारी के की तरफ उसको धकेल सकता है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई घर पे नशा करता है उसको देख के बच्चे भी कर सकते हैं, जी हाँ, इसको मॉडलिंग बिहेवियर कहा जाता है। कई बार अगर घर पे कोई बड़ा बीड़ी सिगरेट पी रहा होता तो बच्चे भी देख के उसको कर सकते हैं, जी हाँ, हो सकता है।
0: तो आपके कहने का ये अर्थ हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस गलत चीज को ना अपनाएं तो सबसे पहले पेरेंट्स को उनके आगे रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जी, और सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आज के समय में इंटरनेट का जमाना है, लोगों के पास, बच्चों के पास एक्सेस बहुत हो गया और उन्हें बहुत सारी चीजें जो बहुत कम उम्र में पता चल जाती हैं। तो ऐसे में जो दोस्तों का दबाव है या सोशल मीडिया का प्रेशर है या फिर कुछ और, ये सारी चीजें कितना रोल प्ले करती हैं उनकी नशे की प्रवृत्ति में?
1: जी, हर चीज का एक अलग रोल है। जैसे आप बोल रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसका पीयर प्रेशर कहते हैं, तो पीयर प्रेशर का काफी रोल रहता है। ज्यादातर देखा गया नशों में कोई दोस्त है तो उसने ही वही शुरू करवाते हैं। तो पीयर प्रेशर में जो हमारा रोल है या फिर स्कूल का या घर वालों का, उनको स्किल्स ट्रेनिंग कहते हैं कि ना बोलना कैसे सीखना है, कि मना कैसे करना है, इन चीजों से क्या क्या, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ पे बात नहीं की जाती।
0: और सर एक बात ये भी है कि जो यंगस्टर्स हैं वो कूल बनना, जो सो कॉल्ड हम कहते हैं, वो वैसे दिखाना चाहते हैं कि हम कूल हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: और इस आदत को अपना लेते हैं।
1: हाँ जी, ऐसा कई सारे मूवीज, कई सारे सॉन्ग्स में भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा नशे से उनको ऐसे कूल दिखाया जाता है, जिससे यंगस्टर्स हमारे प्रभावित होते हैं और वहां से शुरू करते हैं।
0: जी, और सर अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे जब दुनिया में कदम रखते हैं, सोसाइटी में कदम रखते हैं बाहर, तो कहीं ना कहीं एज अ माता पिता हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम उनको समझाएं, लेकिन ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि हम अपने बच्चों को किस उम्र में हमें इन चीजों के बारे में उन्हें जानकारी देनी चाहिए और किस तरह से देनी चाहिए, क्योंकि कई बार माता पिता और बच्चे इतना ओपन अप नहीं होते हैं, तो कैसे वो शुरुआत करें उन्हें वही समझ नहीं आता है।
1: देखिए, एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक बॉन्ड होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। बच्चे के पास एक राह हो कि अगर कुछ भी उसको इस तरीके की दिक्कत हो, सबसे पहले वो पेरेंट्स के साथ जाके बात करे इस चीज को लेके। तो इतना हमें ओपन होना पड़ेगा कि अगर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो बच्चे सबसे पहले आके पेरेंट्स से बात करें। दूसरी चीज कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सजग होकर रखना चाहिए कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके साइंस हो सकते हैं, ताकि जब भी उनको ऐसा लगे तो बच्चे से जाके बात कर सके। सिर्फ पेरेंट्स नहीं, इसमें स्कूल का रोल भी आता है, कॉलेज का रोल भी आता है कि उनको भी अगर कुछ ऐसा हो तो टाइमली पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके या काउंसलर्स को इन्वॉल्व करके बच्चे की आगे ट्रीटमेंट शुरू किया जाए।
0: लेकिन अगर परिवार में माना कि कोई बच्चा ये इन सब चीजों में नहीं इंडल्ज है, लेकिन उसके माता पिता ये चाहते हैं कि हम समय से पहले उसको अवेयर कर दें, उसको वार्न कर दें कि ये चीज गलत है, इसमें तुमको नहीं जाना है और ये जो आपकी प्रोग्रेस है, आपका फ्यूचर है, उसको दुष्प्रभाव डालेगी, तो माता पिता को किस तरह शुरुआत करनी चाहिए बच्चे को बताने?
1: देखिए, इसमें इसका जो शुरुआत है बचपन से ही हो जाता है। बचपन से ही बच्चे का जो अटैचमेंट पैटर्न है पेरेंट्स की तरफ, उसका बहुत रोल है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में, तो बच्चे के अटैचमेंट में कुछ दिक्कत रहेगी, फिर वो घर की बजाय बाहर से ढूंढेगा, जो अपनी एक सोसाइटी में अपने आप को ढूंढने जाएगा, तो उन बच्चों में ज्यादा रिस्क रहता है। तो फिर सबसे पहले तो बचपन से ही आपको एक अटैचमेंट बच्चे के साथ रखनी पड़ेगी, एक ओपन होके रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप उनको इस चीज के बारे में अर्ली एज से ही इसके बारे में थोड़ा सा, नशे के बारे में क्या है, उसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, क्या क्या उससे दिक्कत आ सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, है ना, और इतना ओपन रखें कि वो आपसे आके डिस्कस करें इस चीज।
0: और ऐसे में स्कूल और कॉलेज की क्या भूमिका रहती है? और आपसे साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या स्वास्थ्य विभाग समय समय पर ऐसे कोई कैंप्स या कुछ आयोजन करता है स्कूल कॉलेजेस में, ताकि बच्चों को इस चीज के बारे में अवेयर किया जा सके कि नशा लेना कितना गलत है?
1: जी, आपका पहले सवाल में कि स्कूल का क्या रोल है, स्कूल और कॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर स्किल्स ट्रेनिंग में बहुत जरूरी रोल है कि वो बच्चों को सिखाएं कि कैसे हमें मना करना है, कैसे हमें पीयर प्रेशर से निकलना है, और जब भी कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है तो सबसे पहले कॉलेज में के काउंसलर्स होते हैं या फिर अपने पेरेंट्स से बात करें। प्रशासन को भी जब कुछ ऐसा दिखता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो वो भी पेरेंट्स को जाके छुपाने की बजाय पेरेंट्स से इस चीज को लेकर डिस्कस करें, ताकि आगे की वो शुरू की जाए। और आपका दूसरा सवाल कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलरली स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके नशा मुक्ति पे लेक्चर्स या सेमिनार्स लिए जाते हैं।
0: जी, और डॉक्टर साहब अब ये जानना चाहेंगे कि कई बार लोग जब ये नशे करते हैं तो वो बाद में बोलना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, हमें तो इसकी आदत नहीं है, हम जब चाहें इसे छोड़ सकते हैं, तो ये सोच कितनी भ्रामक होती है और बाद में इस सोच से कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती है?
1: देखिए, ऐसे कई मरीज आते हैं, रोज ही ऐसे मरीज आते हैं जिनमें थोड़ा सा, इसको हम अगर वैसे कहें तो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम छोड़ पाएंगे, जो कि कई लोग छोड़ भी पाते हैं, ऐसा नहीं है, बट कभी कभी वो ट्रीटमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कि ऐसे मरीज ज्यादातर कभी दवाई नहीं लेते रेगुलरली, ये सोच के कि हम छोड़ देंगे, अपने आप छोड़ देंगे। तो इस चीज के लिए हमें उनसे बात करनी पड़ती है, उनकी फैमिली को इंक्लूड करके फिर समझा के, बट हाँ, जरूर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम करता है।
0: जी, और आजकल जैसे पार्टीज हैं, चलती हैं बच्चों की या कुछ भी है, तो ऐसे में जो नशे की आदत है उसमें इन्वॉल्व होने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे खुद से नहीं करते हैं, लेकिन उनके दोस्त उनको बोलते हैं एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, तो ये बात आज के संदर्भ में कितनी चिंताजनक है, ऐसा आप क्या सोचते हैं?
1: जी, काफी सारे नए सिंथेटिक और पार्टी ड्रग्स आ गए हैं जो काफी अलग अलग फॉर्मुलेशंस के साथ आ रहे हैं, और उनके क्या असर हो सकते हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो अभी भी कुछ कुछ सिंथेटिक ड्रग्स पे स्टडी बाकी है
0: जी।
1: तो ज्यादातर जो पार्टी कल्चर है इसमें काफी सारे, जनरली आप देखेंगे तो पहले कोई फ्रेंड यूज करता होगा, नशे करता होगा, वही पहला जो होगा वो फ्री ही होता है, पहला नशा हमेशा फ्री दिया जाता है। उसके बाद एक बार जब लत लगने शुरू हो जाती है तो उसके बाद फिर वो जब पैसा अपने जेब से निकाल के खर्च करना पड़ता है तब वो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। लेकिन हाँ, पार्टी ड्रग्स का काफी रिसेंट में है, काफी नए नए किस्म के ड्रग्स आ रहे हैं
0: जी। और ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से भी क्या बच्चों को इस बारे में जानकारी मिल रही है, या वहां से भी वो नशा उनको मिल जाता है आसानी से?
1: जी, सोशल मीडिया के थ्रू नशे की जानकारी तो मिल रही है मूवीज के थ्रू, और ऑनलाइन भी कुछ ऐसे पोर्टल्स जो मेरे नॉलेज में है, खासकर डार्क वेब के थ्रू कुछ कई जगह कई ऐसे गैंग्स पकड़े गए हैं जो डार्क वेब के थ्रू नशा प्रोवाइड करते हैं
0: जी। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे दोनों जो नशे हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि जो हम शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल के होते हैं और बच्चों के पास पहुंच बहुत आसानी से होती है, तो ऐसे में क्या अंतर आपको दिखाई देता है?
1: जी देखिए कि ये जो डिफरेंस है, जो फर्क है जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में, वो पहले से ही था कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर बीड़ी, तंबाकू और जो शराब और तरीके के नशे का प्रचलन ज्यादा है, जबकि अगर आप शहरों की तरफ जाएं तो थोड़े से हार्ड ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स, कोकेन, मेथैम्फेटामिन्स, इस तरीके के ड्रग्स का, क्योंकि उनके पास पैसे का साधन होता है। बट कुछ टाइम से, खासकर जब से इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में चिट्टे का आना हुआ है, तो ये देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस चीज का ये अंदर तक घुस गया है। तो जैसे एक पंजाब ओपियोइड डिपेंडेंट स्टडी है, उसमें ये दिया गया है कि उसमें ये लिखा गया है कि ज्यादातर जो चिट्टा है वो ग्रामीण क्षेत्र में और जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उनमें ज्यादा है
0: जी। तो पढ़ाई का या शिक्षा का इसमें क्या भूमिका रहती है कि नशा करने से लोग बच सकते हैं?
1: जी, पढ़ाई में मेरा मानना है कि एक स्कूल लेवल से ही एक हेल्थ एजुकेशन तो शुरू होनी चाहिए, जिसमें हम इसके जो एक कॉमनली जो आम तौर पे यूज जो नशे ही हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ाया जाए, सिखाया जाए कि क्या ये नशे कैसे काम करते हैं और इनसे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। वैसे ही पढ़ाई लिखाई में ये चीज भी, मतलब जो टीचर्स हैं उनको भी इतना अवेयर किया जाए कि वो समझ पाए कि नशे के अगर कोई बच्चा कर भी रहा है तो उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, ताकि वो टाइमली उसको इंटरवीन किया जा सके।
0: जी, और इससे कई बार क्या होता है कि जैसे परिवार को जैसे ही पता चलता है कि बच्चा नशे की आदत में गिरफ्त है, तो वो अपने लेवल पे क्या करते हैं, उसको समझाना शुरू कर देते हैं, मारपीट भी करना उसके साथ शुरू कर देते हैं कि ताकि बाहर ना पता चले बट घर में ही हम उसको सुधार लें। तो किस पॉइंट पे परिवार को ये समझ जाना चाहिए कि अब उनके समझाने से बात नहीं बनेगी और उनको जो किसी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, या अपने बच्चे को इस समस्या से दूर करने के लिए कोई ना कोई और उपाय करने पड़ेंगे?
1: जी, कई अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे ने शुरुआत ही की है तो हो सकता है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उसको लत ना लगी हो, तो उसमें परिवार का रोल है, वो बात करके और समझा के भी उस पे किया जा सकता है। लेकिन अगर वो इतनी स्टेज तक पहुंच गया है कि बच्चा उसको रोज ले रहा है, उसकी वजह से वो अपने स्कूल या कॉलेज जाना मिस कर रहा है, उसकी वजह से उसको कोई स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं, तो फिर वो थोड़ा सा बात ज्यादा बढ़ गई है, तो उसके लिए परिवार को ये चाहिए कि उनसे बात करके और एक साइकेट्रिस्ट या काउंसलर से डिस्कस करें।
2: कार्यक्रम आरोग्यम जारी रहेगा, सुबह 9:23 पर भी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 9:20 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए। आईजीएमसी शिमला में पहली बार हुई बड़ी आंत के कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी। और पंचायत चुनावों के मद्देनजर किन्नौर जिला की पंचायतों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व मतदान दिवस तथा मतगणना दिवस को ड्राई डे घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पंचायत चुनावों के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 3 बजे थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान चला सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 28 व तीसरे चरण के लिए 30 मई को मतदान होगा। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। आईजीएमसी शिमला में पहली बार बड़ी आंत यानी कोलन कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी की गई है। निजी अस्पतालों में इस सर्जरी पर 5 लाख रुपये तक खर्च आता है, जबकि आईजीएमसी में सिर्फ 30,000 रुपये में ये ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। आईजीएमसी के सर्जरी विभाग के HOD डॉक्टर पुनीत महाजन और कैंसर सर्जन डॉक्टर यशपाल ने बताया कि बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित मरीज की रोबोटिक तकनीक से सफल सर्जरी की गई। चिकित्सकों ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी में कम दर्द, कम रक्तस्राव होता है और बड़े चीरे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आईजीएमसी में अब तक 38 रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है, जिनमें कैंसर के 3 मरीज शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि आईजीएमसी में कम खर्च पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान है।
3: एक हमारे बड़ी गर्व की बात है कि हमने बाहर से कोई प्रॉक्टर भी नहीं मंगाया था। ज्यादातर बड़ी सर्जरी में नहीं तो हम पहले बाहर से प्रॉक्टर लगाते थे, बट एज अ टीम हम सर्जरी की टीम में विद हेल्प ऑफ द एनेस्थीसिया टीम डॉक्टर सुभाष की सर्जरी के लिए हमने अपने आप की तैयारी की। इसके लिए हमारे पास डॉक्टर रशपाल है जो हमारे ऑन्को सर्जन है, कैंसर सर्जन है, और हमारे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीतीश और डॉक्टर फहीम और डॉक्टर रूबी हमारी टीम ने उसकी तैयारी की और हमने 20 तारीख को उसको सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के लिए ऑपरेशन कर लिया। इसमें जो प्रोसीजर था ये LAR बोलते हैं, उसको लो इंटीरियर रिसेक्शन। इसमें बड़ी आंत को काट के आपको शायद ज्ञात होगा, कई बार पूरी बड़ी आंत और नीचे लेटरिन के रास्ते तक कैंसर हो तो उसको पूरा पूरा निकाल के हमें जल्दी पेट के रास्ते से फाइनली उसका रास्ता बनाना पड़ता है बड़े आंत के कैंसर को। बट इसमें हमें रोबोटिक सर्जरी का ये फायदा रहा कि ये हिस्सा हम रोबोटिक सर्जरी द्वारा बड़ी आंत का काफी सारा हिस्सा निकाल पाए और उसका नॉर्मल रास्ता जो है लेटरिन का रास्ता उसको जोड़ पाए।
2: कुल्लू जिला में पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में कुल 3,17,476 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए कुल 7,228 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 26 मई को होने वाले इस चरण के लिए जिले में कुल 511 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए 2,601 सरकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस चरण के दौरान कुल 1,14,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं तथा प्रत्याशियों से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सहयोग की अपील की है। लाहौल स्पीति में पंचायतीराज चुनावों के बीच मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चुनावी ड्यूटी के दौरान पोलिंग पार्टियों के लिए खाना बनाने के आदेशों का विरोध किया है। वर्कर्स का आरोप है कि जनजातीय क्षेत्र के दूरदराज इलाकों में रात 10 से 11 बजे तक ड्यूटी करना उनके लिए मुश्किल और असुरक्षित हो सकता है। यूनियन ने जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
4: यूनियन का कहना है कि 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों में कई महिला वर्कर्स को देर रात तक भोजन तैयार करना पड़ेगा, जिससे उनकी सुरक्षा और घर वापसी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यूनियन ने जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि सरकारी नियमों के अनुसार उनसे विभागीय कार्यों के अलावा अन्य कार्य नहीं करवाए जाने चाहिए। फिलहाल इस मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
2: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला किन्नौर व स्पीति क्षेत्र में मतदान और मतगणना के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी किन्नौर व स्पीति क्षेत्र एकांकियों द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। पंचायत चुनावों के मद्देनजर संबंधित पंचायत क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व मतदान दिवस तथा मतगणना दिवस को ड्राई डे घोषित किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
5: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रथम चरण के मतदान के लिए 24 मई शाम 3 बजे से 26 मई तक, दूसरे चरण के लिए 26 मई 3 बजे से 28 मई तक तथा तीसरे चरण के लिए 28 मई शाम 3 बजे से 30 मई तक संबंधित क्षेत्रों में शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। वहीं जिला परिषद एवं पंचायत समिति मतगणना दिवस 31 मई को भी चयनित क्षेत्रों में सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। प्रशासन ने सभी लाइसेंस धारकों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 तथा आबकारी नीति 2026-27 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
2: स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सॉफ्टवेयर हैं, जबकि अवसंरचना और अन्य सुविधाएं राष्ट्र के हार्डवेयर हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि युवा चिकित्सकों की विशेषज्ञता, नवाचार और प्रतिबद्धता देश की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करने और देश भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के बारे में श्री नड्डा ने कहा कि संस्थान ने एक मजबूत ब्रांड बनाया है। ये स्वास्थ्य सेवा में पेशेवर दक्षता, समझ और विश्वसनीयता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि रोगियों की देखभाल को मजबूत करने के लिए 11 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। समारोह में 26,396 उम्मीदवारों को राष्ट्रीय बोर्ड के डिप्लोमा और डॉक्टरेट की उपाधियां तथा फेलोशिप प्रदान की गई। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, आचार संहिता में कैबिनेट बुलाकर क्यों लिए फैसले, चुनाव आयोग ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। दैनिक जागरण के शब्द हैं, चुनाव आयोग का मुख्य सचिव को नोटिस, मंत्रिमंडल बैठक हुई तो क्या निर्णय लिए। पंजाब केसरी की सुर्खी है, हिमाचल में रोबोटिक तकनीक से कैंसर मरीज की पहली सफल सर्जरी, IGMC शिमला ने रचा इतिहास। दिव्य हिमाचल की खबर है, हिमाचल की बेटी ने फतह किया एवरेस्ट, करसोग की रुचिका ठाकुर ने ITBP के महिला अभियान दल संग लहराया तिरंगा। हिमाचल दस्तक लिखता है, आज 3 बजे थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार, मौसम के रंग सुबह धूप, शाम को बारिश, ओलों और बर्फबारी से 5 डिग्री तक गिरा पारा। शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, आज से साफ रहेगा मौसम, 28 को करवट बदलेगा मौसम, बारिश के आसार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए। IGMC शिमला में पहली बार हुई बड़ी आंत के कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी और पंचायत चुनावों के मद्देनजर किन्नौर जिला की पंचायतों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व मतदान दिवस तथा मतगणना दिवस को ड्राई डे घोषित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
6: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:23 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्यम का शेष भाग।
7: सर, नशा मुक्ति केंद्र आजकल काफ़ी प्रचलन में है और बहुत से लोग वहाँ जाते भी हैं ताकि वो नशे की इस बुरी आदत को छोड़ दें, तो ऐसे में उनकी क्या भूमिका है और वो कितनी महत्वपूर्ण है?
8: जी, नशा मुक्ति केंद्र की काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है आज के टाइम में, और खासकर जैसे हिमाचल में और नशे की अभी काफ़ी समस्या है, तो पर ये हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पे एक रेगुलर साइकेट्रिस्ट या एक काउंसलर हो, विजिट हो, वहाँ पे प्रताड़ना ना हो, वहाँ पे स्किल सिखाए जाएं, वहाँ पे बच्चों को एक सोसाइटी में वापस कैसे लेके आना है वो चीज़ें, उसके स्किल सिखाए जाए। अगर कोई वहाँ पे प्रताड़ना कर रहा है तो वो फिर कोशिश करें कि अगर ऐसा कुछ है तो बच्चे को वहाँ उसकी जगह, कुछ सरकारी नशा मुक्ति केंद्र भी हैं वहाँ पे प्रेफर करें, या डी एडिक्शन सेंटर्स जो अच्छे हैं।
7: जी सर, और जैसा कि आपने भी सुना होगा कि हमारी सरकार ने खेलो इंडिया ऐसी, फिट इंडिया मूवमेंट ऐसी चलाई है, और इसके साथ अग्निवीर योजना भी, वो इसीलिए चलाई गई है ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, वो खेलों में फिजिकल एक्सर्शन में ज्यादा इन्वॉल्व रहे और इस बुरी आदत की तरफ ना जाए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे?
8: जी, अनएम्प्लॉयमेंट और अगर रोजगार नहीं होना भी एक रिस्क फैक्टर है जो देखा गया है। तो अगर आप बच्चे को किसी युवावस्था में ही किसी ऐसे स्किल में, किसी स्पोर्ट्स में या किसी चीज में आप इन्वॉल्व कर दें तो बच्चा उसमें बिजी रहेगा, तो हाँ जी, रिस्क जरूर कम होता है इस चीज से।
7: जी, और आजकल जो काम का तनाव है, पढ़ाई का तनाव है, आगे बढ़ने की जो होड़ है, तो ये कितना रोल प्ले करती है कोई भी बच्चे को नशे की ओर ले जाने?
8: जी, इसको मेडिकल टर्म में बर्नआउट कहा जाता है।
7: जी,
8: जो बच्चे काफी या तो एग्जाम को लेकर तनाव में है या कॉम्पिटिशन को लेकर तनाव में है, तो उनमें देखा गया है कि जो रिस्क है नशे की प्रवृत्ति जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसके लिए ये है कि अगेन थोड़ा जो परिवार है वो थोड़ा सा सजग रहे और बच्चों को भी समझ आए कि ये जो एग्जाम्स हैं ये टेम्परेरी हैं, लेकिन अपना जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा वो परमानेंट है ना, उसके ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है ना।
7: तो ऐसे में उनके खाने पीने का या दिनचर्या में क्या वो चेंजेस लेकर आए ताकि वो इन गलत आदतों की तरफ आकर्षित ना हो?
8: जी, इसको स्केड्यूलिंग कहा जाता है कि अपने जो रूटीन, जो रोजमर्रा की जिंदगी, एग्जाम्स के लिए मान लीजिए कोई तैयारी कर रहा है तो उसकी अपनी डेली लाइफ का एक स्केड्यूल बनाए कि इतने घंटे जो है वो पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद इतने घंटे मेरे को कुछ भी अपने एंजॉयमेंट के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, टीवी हो, कुछ भी हो, कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो, तो एक स्केड्यूलिंग बहुत जरूरी है अपनी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में।
7: जी, और जब कोई व्यक्ति नशे की आदत छोड़ना चाहता है तो ऐसे में सबसे पहले क्या उसकी काउंसलिंग होती है या डायरेक्ट उसको रिहैब सेंटर में ही जाना?
8: नहीं जी, ये देखा जाता है कि वो जो नशे की समस्या है वो कितनी बड़ी है और उसकी वजह से इंसान को खुद, जो पेशेंट है उसको खुद और जो आसपास के लोग हैं उनको कितनी दिक्कत आ रही है, फिर ये देखा जाता है कि क्या उसको ओपीडी बेसिस पे मैनेज किया जा सकता है या उसको एडमिशन की जरूरत है। तो अलग अलग नशों का अलग अलग होता है। अब मान लीजिए कोई शराब काफी टाइम से और रोज ले रहे हैं तो उनमें और भी स्वास्थ्य की और बीमारियां जैसे लिवर की दिक्कत, ब्रेन की, काफी सारी दिक्कतें होने का रिस्क होता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कितनी ज्यादा समस्या है। पहले ये समस्या समझी जाती है, उसके बाद घर वालों से डिस्कस करके दवाइयों पे डाला जाता है, बट साथ में काउंसलिंग सेशंस भी चलते हैं।
7: तो इलाज के दौरान क्या परिवार है उसकी भी काउंसलिंग होती है?
8: जी, परिवार को भी समझाया जाता है, फैमिली थेरेपीज होती है जिसमें उनको समझाया जाता है कि ये जो नशा है ये एक बीमारी है और इसका भी इलाज है और इसमें बार बार रिलैप्सेस भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार पेशेंट एडिक्शन सेंटर में आया या काउंसलिंग के लिए आया तो वो ठीक ही हो जाएगा। इसमें कई बार रिलैप्सेस होंगे, लेकिन जब उसका रिलैप्स हो, दोबारा शुरू करे, तो हमारे पास जल्दी आ जाए, जल्दी पहुंच जाए ताकि हम ट्रीटमेंट दोबारा से शुरू कर सके।
7: और इस सारे ट्रीटमेंट की कोई टाइम पीरियड फिक्स होता
8: नहीं,
7: है?
8: नहीं, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और ड्रग टू ड्रग वेरी करता है।
7: और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है उसके जो विल पावर है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो छोड़ना चाहता है और कितना डेडिकेशन दिखाता है इसको छोड़ने के लिए।
8: जी, इसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्टेज मोटिवेशन कहा जाता है कि पेशेंट की अपनी इंटरनल अंदर से कितनी चाह है छोड़ने की, तो जिनकी मोटिवेशन अच्छी होती है उनमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है, और जिनमें मोटिवेशन नहीं है उनमें फिर एक थेरेपी होती है जिसको मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी, उनको समझाया जाता है बात करके कई कई सेशंस के, फिर उससे मोटिवेशन बढ़ाई जाती है।
7: जी सर, और आपके पास तो इतने सारे पेशेंट्स आते हैं इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में किस आयु वर्ग के लोग आपको लगता है कि इस नशे की समस्या में सबसे ज़्यादा गिरफ्त हैं?
8: देखिए, नशे में तो सभी आयु के लोग गिरफ्त हैं, लेकिन अलग अलग नशे के अलग अलग आयु हैं। अगर आप बीड़ी का नशा, अगर बीड़ी या गुटखे का, तो ज्यादातर वो 40 या उसके ऊपर एज के लोग उसमें काफी ज्यादा ग्रस्त हैं। अगर आप चिट्टे की बात करें, पहली जो 15 से लेके 20-25 साल की उम्र में पहली बार ज्यादातर लोग चिट्टे का इस्तेमाल करते हैं। भांग और चरस भी इसी उम्र में होती है, और अगर दारू की बात करें, शराब की बात करें, वो भी लगभग इसी उम्र में शुरू होती है।
7: और हमारा जो प्रदेश है डॉक्टर साहब, पहले एक बहुत शांत प्रदेश माना जाता था, लेकिन अभी कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है वो नशे की प्रवृत्ति है वो युवाओं में बहुत ही बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में आप इस समस्या को किस रूप में देखते हैं?
8: देखिए, इसके काफी सारे रीजंस हैं, काफी सारे वजह हैं। इनमें से एक वजह तो है कि सोशल मीडिया ग्लोबलाइजेशन हो गई है। हम जो पहले अलग थोड़ा सा इतना ओपन नहीं था, अभी थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें एक्सेस है, यूएसए में क्या चल रहा है, कहीं और यूरोप में क्या चल रहा है, हमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सेस हो गया। दूसरा, हिमाचल एक पर्यटन नगरी भी है, तो दूसरा उसकी वजह से भी है। तीसरा, हमारा जो बॉर्डर लगता है, ज्यादातर जो नशा फॉर्म में आ रहा है वो हमारे पड़ोसी प्रदेश से आ रहा है, तो ये काफी सारी अलग अलग वजह हैं जिसकी वजह से हिमाचल में आजकल चिट्टे थोड़ा सा ज्यादा।
7: जी, और ये जो आपने कहा कि पर्यटन का भी काफी प्रभाव पड़ा है, तो ऐसे में आप हमें ये बताइए कि किस तरह के जो हमारी एनजीओस हैं यहाँ पे या स्थानीय स्तर पर जो हमारे लोग काम करते हैं इस दिशा में, ताकि अपने यहाँ रहने वाले बच्चों को इस समस्या से बचा सके, इस बुरी आदत से बचा सके, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए और किस तरह वो कदम उठा सकते हैं इस दिशा में?
8: जी, एनजीओस काफी सारे काम कर भी रहे हैं, और इसमें ज़्यादातर वही जैसे अवेयरनेस कैंपेन्स हों जिनमें बच्चों को इस चीज़ के बारे में, नशे के बारे में, नशे के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में बताया जाए, और उसके अलावा जो है रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, ताकि उनको टाइमली एक काउंसलर या एक एक्सपर्ट के पास लेके आया जाए। काफ़ी सारे एनजीओज इसमें काम कर भी रहे हैं ऑलरेडी।
7: और सर, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे कई जगह पंचायत है, कई जगह महिला मंडल हैं, युवा मंडल भी हैं, तो ऐसे में उन समुदायों की क्या भूमिका रहेगी और किस प्रकार वो स्वास्थ्य विभाग से टाई अप भी कर सकते हैं ताकि वो अपने यहाँ रहने वाले लोगों को इस समस्या के बारे में समय समय पर अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें?
8: जी, पंचायत और महिला मंडल का खासकर ज्यादा इस चीज़ में रोल है, क्योंकि जो मैं रोजमर्रा की जिंदगी में देखता हूँ कि नशे से सबसे ज्यादा प्रभावित मरीज, लेकिन मरीज के साथ जो महिलाएं हैं, चाहे वो उनकी वाइफ हो, चाहे मदर हो, बहन हो, वो सबसे ज्यादा उन पे दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड वही हैं। तो इस तरीके के पंचायत लेवल पे या महिला मंडल, वो जब उनको ऐसा लगता है कि गांव में कोई है या कोई नशे की तरफ जा रहा है, तो उनके जो लोकल हॉस्पिटल हैं, वहाँ पीएचसीज होंगे या लोकल सब सेंटर है, उनसे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें ताकि वो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दी जा सके।
7: जी, और डॉक्टर साहब, कई बार हमने ये देखा है कि आजकल कुछ ऐसे नशे भी आ गए हैं जिनमें कोई स्मेल नहीं होती है, या जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो लड़खड़ा रहा है या उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है, वैसा हमें उन नशों में नहीं दिखता है। तो किन छोटे छोटे बदलावों से माता पिता को या आसपास जो रहते हैं उनको ये पता चल जाए कि ये बच्चा जो है वो नशे की आदत में गिरफ्त?
8: जी, इसमें देखिए, खासकर जो नए नशे आ रहे हैं इनमें ये चीज, ये दिक्कत है कि सिर्फ जैसे शराब में स्मेल आ जाती है, वैसा नहीं होता, लेकिन उसमें और कई सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि घर से लेट नाइट बाहर तक रहना, स्कूल को मिस करना, कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज से कंप्लेंट्स आ रही हैं, फिर स्वभाव में बदलाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मूड स्विंग्स, और पैसे ज्यादा मांगना, और पैसे कहाँ जा रहे हैं कोई अता पता नहीं, ये सब छोटे छोटे सिम्टम हो सकते हैं।
7: जी, और सर एक चीज ये भी बताइए कि हिमाचल को हमारी सरकार, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो सब नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, पारिवारिक स्तर से करनी चाहिए, और सरकार का, समाज का और युवाओं की क्या भूमिका रहेगी?
8: जी, सरकार की तरफ से नशा मुक्ति अभियान और काफी सारे इस तरीके के वो अभियान तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये परिवार लेवल से होते हुए ये हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, सभी डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करता है। तो परिवार लेवल पे तो सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हैं, ये ज्ञान भी होना चाहिए कि ताकि हम अवेयर कर पाएं कि हमारे पास ये सब फैसिलिटीज हैं। पुलिस भी अपना काम कर ही रही है इसमें, और उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन सेक्टर का काफी रोल है इसमें अवेयरनेस फैलाने में।
7: जी, और डॉक्टर साहब आप हमारे युवाओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह वो इस बुरी आदत से अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी जो उनकी एनर्जी है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं?
8: जी, इसके लिए एक तो एक रेगुलर एक स्केड्यूल बनाना अपने डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जिसमें फिजिकल कुछ एक्टिविटी भी हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, वो होना जरूरी है। देखा गया है वो भी डोपामीन पे ही काम करके वो आपके रिवॉर्ड पाथवे पे काम करता है। दूसरी चीज एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी मील, और जब भी कोई ऐसा मानसिक तनाव या हो तो सबसे पहले किसी

0: सैलड्स फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा हों, एक हेल्दी डाइट का भी इसमें रोल रहता है
1: जी। और एक बात और है, क्योंकि परिवार छोटे हैं और बच्चों के पास वो नहीं मिलता है उनको वैसा वातावरण कि वो अपने परिवार में किसी को बोलें, और पेरेंट्स से कहीं ना कहीं माता पिता से डर भी लगता है, तो ऐसे में क्या वो डायरेक्ट एक काउंसलर को हॉस्पिटल में जाके अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ हमें ये आदत है और हम बोलना चाहते हैं कि हमारे अंदर ये सब चीजें चल रही हैं।
0: जी हाँ, पहले तो वही समझना पड़ेगा कि ये भी एक बीमारी ही है, जैसे कोई और बीमारी होती है उसी तरीके की एक बीमारी है और इसका इलाज है। तो जो भी आपके पास के, अगर आपको लग रहा है कि आप घर वालों से नहीं बात कर पाएंगे, तो ये आपने जो नेबरिंग जो घर के पास साइकेट्रिस्ट हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनसे जाके डिस्कस किया जा सकता है, ताकि वो को आगे बता सकें कि आगे की राह क्या है।
1: जी, और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति नशे की लत जिस व्यक्ति को लगी होती है, वो मानसिक रूप से हमने सुना है कि कमजोर हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, तो इसका क्या प्रभाव है और इसका अर्थ क्या है, ये समझाइए।
0: जी, ऐसा देखा गया है कि इनके बीच में जो मानसिक बीमारियां हैं और जो नशा है, उनके बीच में एक, जिसको हमारी लैंग्वेज में बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं, मतलब मानसिक बीमारी से नशे का रिस्क बढ़ता है और नशे से मानसिक बीमारी का रिस्क बढ़ता है। हाँ जी, दोनों एक साथ भी चलते हैं। तो कई बार किसी में जैसे डिप्रेशन है, उदासी रहती है, तो खुद को थोड़ा सा खुश करने के लिए कुछ नशा शुरू करते हैं। कुछ लोग एंग्शियस होते हैं, एंजाइटी होती है, तो उनको घबराहट होती है लोगों के सामने बात करने में, तो वो उसके लिए नशे को, खासकर शराब को शुरू करते हैं। तो शुरू शुरू में उनको फर्क पड़ता है, लेकिन वो, जब वो लत लग जाती है तो उसकी वजह से दिक्कत आनी शुरू होती है। वैसे ही जिनमें, जो काफी टाइम से नशे कर रहे होते हैं, उनमें भी डिप्रेशन और एंजाइटी और खुद को नुकसान पहुंचाना, सुसाइडल रिस्क भी ज्यादा हो जाता है।
1: और सर, जब कोई नशा छोड़ना चाहता है और वो रिहैब सेंटर को ज्वाइन करता है, तो आप हमें बताएंगे, हमारे सुनने वालों को, कि वहां पे क्या माहौल होता है? क्या सिर्फ उन्हें दवाएं दी जाती हैं, या किस तरह से उनको बिजी रखा जाता है ताकि उनका इस आदत की तरफ ध्यान ही ना जाए?
0: देखिए, कभी भी कोई नशे से अगर हम कभी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, वो फेजेस में होती है। तो सबसे पहले हम डिटॉक्सिफिकेशन फेज देते हैं, जिसमें दवाइयां दी जाती हैं, ताकि जो उसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं, जो भी अलग अलग विड्रॉल सिम्टम्स हैं, चाहे वो दारू है, नशा है, चाहे वो शराब है, चाहे वो चिट्टा है, उसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं, उसको धीरे धीरे कम किया जाता है। उसके बाद एक मेंटेनेंस थेरेपी होती है, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट होती है, जिसमें उनको उस पर कंटिन्यू किया जाता है कुछ टाइम तक, जब तक घर वालों और जो डॉक्टर है उनको विश्वास नहीं हो जाता कि पेशेंट अपने आप अब ठीक है। और साथ में रिहैबिलिटेशन सेंटर में साथ में दूसरी सर्विसेज, जैसे स्किल ट्रेनिंग होती है, अवेयरनेस सर्विसेज होती है, ये सब, और जो उनको वापस सोसाइटी में जुड़ने में हेल्प करती है, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है।
1: जी, और कई बार कहते हैं डॉक्टर साहब की जो प्रेरक कहानियां हैं या प्रेरक किताबें हैं, वो कितना रोल प्ले करती हैं कि व्यक्ति जो है वो गलत आदतों की तरफ या गलत दिशा में ना जाए?
0: जी, इनका काफी ज्यादा रोल है। इनफैक्ट कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें ग्रुप काउंसलिंग दी जाती है, तो उनमें कई बार हम जो एक इंसान जो सक्सेसफुली नशा छोड़ चुके हैं, उनकी स्टोरी लेके आते हैं सबके सामने कि उन्होंने कैसे नशे से पार पाई, तो वो जो है वो काफी प्रेरणादायक जो स्टोरीज हैं, हम उनका यूज करते हैं। वैसे ही कई सारे और ग्रुप्स हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस और ये सब, उनमें भी ऐसी चीजें होती हैं।
1: और सर, एक चीज और बताइए कि जिस तरह से कई लोग, ज्यादातर लोग, अधिकतर हम देखते हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और जहाँ पे वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा, तो ऐसे में उनको अपने लिए समय नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं वो कोई हॉबी जो है उसमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते हैं, तो ऐसे में उनके पास आसान जो अपने आप को रिलैक्स करने का साधन यही चीज होती है, तो ऐसे में वो किस तरह से अपनी दिनचर्या में चेंज ला सकते हैं और इस चीज की तरफ से अपना ध्यान हटा सकते हैं?
0: जी हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादातर उसमें ये थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स रहते हैं। तो एक तो ये है कि ये चीज जो कंपनी में, जहाँ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका भी रोल आता है कि अगर कोई बर्नआउट कैसे आइडेंटिफाई, कैसे पता चलना है कि वो जो है वो मानसिक तनाव में है, उनमें कुछ सिम्टम्स हैं, और उनको कब रेफर करना है, ये कंपनी और जो प्राइवेट कंपनी है उनका भी काम है। दूसरी चीज कि वो लोग अपने आप क्या कर सकते, अगेन वो एक हेल्दी स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं, बीच में आधा घंटा एक्सरसाइज दिन की और एक रेगुलर मील जो है वो, रेगुलर डाइट जो है वो, और साथ में किसी से घर पे कोई ऐसा हो जिनसे वो खुल के बात कर सके इस चीज को लेकर।
1: जी, श्रोता और कार्यक्रम आरोग्यम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद कंवर। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आरोग्यम के श्रोताओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य और नशे से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण संदेश जो कि हमारी समाज को काफी फायदेमंद हो, हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा कि नशा एक बीमारी है, लेकिन ये इस तरीके का है कि इसका इलाज है, ठीक है। अगर पीयर प्रेशर हो तो ना कहना सीखिए, अगर गलती से शुरुआत हो गई तो डरिए मत, मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, हिम्मत है, और आपका जीवन, आपका परिवार और आपका भविष्य नशे से कहीं ज्यादा कीमती है।
1: जी, और सर, चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और वो इस नशे की लत में गिरफ्त हैं, तो वो अगर आपको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो आपसे कहाँ पे मिल सकते?

0: इसके लिए जी साइकेट्री का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है टांडा में, वहाँ पे हमारे थ्रू आउट द वीक हमारी सर्विसेज चलती हैं, डी एडिक्शन फैसिलिटी भी है वहाँ पे, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी और अल्कोहल के जो हैं जो ज्यादा हिमाचल में जो ड्रग्स हैं उनके सभी की हमारे पास वहाँ पे मौजूद है।
1: और इसके लिए उनकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी?
0: जी गोपनीय रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल।
1: तो श्रोताओं, आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि नशा केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की भी बीमारी है और हर बीमारी की तरह इसका उपचार भी संभव है। जरूरत है जागरूकता की, संवेदनशीलता की और समय रहते हुए सही मदद लेने की। अगर आपके आसपास कोई इस संघर्ष से गुजर रहा है तो उसे अकेला न छोड़ें, उसका साथ दें, उसका हाथ थामें। याद रखिए, नशे से लड़ाई कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक सही कदम, एक सही सलाह और एक मजबूत सहारा किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कंवर ने इतनी अच्छी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें इतने सरल तरीके से दी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और सर, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आकाशवाणी धर्मशाला आपका आभार करता है। तो श्रोताओं, आज के आरोग्यम कार्यक्रम में बस इतना ही। वंदना रैना को दीजिए अनुमति। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र पाल सिंह।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत।

अकेले हम अकेले तुम, श्रोताओं इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। अब आपको सुनवा रहे हैं सातवां आसमान फिल्म का ये गीत।

सुबह के 10 बज चुके हैं श्रोताओं, हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सचिता।

0: श्रोताओ, अभी जो आपने गीत सुना इसे हमने लिया था फिल्म चोर और चांद से। आवाजें थी एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पोडवाल की।
1: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
0: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
1: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
0: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
0: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। फिल्म शिकारी से कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को गाया है कुमार सानू ने।

श्रोताओं, अनुराधा पौडवाल, जसविंदर नरूला और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना। इस गीत को हमने लिया था फिल्म दाग द फायर से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम।

हिमाचली गीत और लोकगीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार। तो हाजिर हो चुके हैं हम हिमाचली गीत और लोकगीतों के साथ। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति अभिषेक सोनी की आवाज में, ये भजन हम आपको सुनवा रहे हैं।

हिमाचली गीत और लोकगीत हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम में अब हमने शामिल किया है भुवनेश कुमार की आवाज में यह लोकगीत।

हिमाचली गीत और लोकगीत आज का ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं अपनी रेडी दोस्त प्रवीण के साथ। इस लोकगीत में आप सुनेंगे नरोत्तम व साथियों की आवाज को।

इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का हिमाचली गीत और लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अनुमति दीजिए।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 3 बजे थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान चला सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 28 व तीसरे चरण के लिए 30 मई को मतदान होगा। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। कुल्लू जिला में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि जिले के कुल 3,17,476 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए कुल 7,228 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 26 मई को होने वाले इस चरण के लिए जिले में कुल 511 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए 2,601 सरकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस चरण के दौरान कुल 1,14,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं तथा प्रत्याशियों से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सहयोग की अपील की है। लाहौल स्पीति में पंचायती राज चुनावों के बीच मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग पार्टियों के लिए खाना बनाने के आदेशों का विरोध किया है। वर्कर्स का आरोप है कि जनजातीय क्षेत्र के दूरदराज इलाकों में रात 10 से 11 बजे तक ड्यूटी करना उनके लिए मुश्किल और असुरक्षित हो सकता है। यूनियन ने जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: यूनियन का कहना है कि 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों में कई महिला वर्कर्स को देर रात तक भोजन तैयार करना पड़ेगा, जिससे उनकी सुरक्षा और घर वापसी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यूनियन ने जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि सरकारी नियमों के अनुसार उनसे विभागीय कार्यों के अलावा अन्य कार्य नहीं करवाए जाने चाहिए। फिलहाल इस मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। आईजीएमसी शिमला में पहली बार बड़ी आंत यानी कोलन कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी की गई है। निजी अस्पतालों में इस सर्जरी पर 5 लाख रुपए तक खर्च आता है, जबकि आईजीएमसी में सिर्फ 30,000 रुपए में ये ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। आईजीएमसी के सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर पुनीत महाजन और कैंसर सर्जन डॉक्टर यशपाल ने बताया कि बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित मरीज की रोबोटिक तकनीक से सफल सर्जरी की गई। चिकित्सकों ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी में कम दर्द, कम रक्तस्राव होता है और बड़े चीरे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आईजीएमसी में अब तक 38 रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है, जिनमें कैंसर के 3 मरीज शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि आईजीएमसी में कम खर्च पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान है।
2: आपका कैंसर था, ये मरीज हमारे पास कुछ 1.5-2 महीने पहले आया था। कुछ एक हमारे बड़ी गर्व की बात है कि हमने बाहर से कोई प्रॉक्टर भी नहीं मंगाया था। ज्यादातर बड़ी सर्जरी में नहीं तो हम पहले बाहर से प्रॉक्टर लगाते थे, बट एज अ टीम हम सर्जरी की टीम में विद हेल्प ऑफ द एनेस्थीसिया टीम डॉक्टर सुभाष की सर्जरी के लिए हमने अपने आप की तैयारी की। उसके लिए हमारे पास डॉक्टर यशपाल है जो हमारे ऑनको सर्जन है, कैंसर सर्जन है, और हमारे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीश और डॉक्टर फाहिम और डॉक्टर रूबी हमारी टीम ने उसकी तैयारी की और हमने 20 तारीख को उसको सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के लिए ऑपरेशन कर लिया। इसमें जो प्रोसीजर था ये LAR बोलते हैं, लो इंटीरियर रिसेक्शन। इसमें बड़ी आंत को काट के आपको शायद ज्ञात होगा कई बार पूरी बड़ी आंत और नीचे लेटरिन के रास्ते तक कैंसर हो तो उसको पूरा पूरा निकाल के हमें जल्दी पेट के रास्ते से फाइनली उसका रास्ता बनाना पड़ता है बड़े आंत के कैंसर को। बट इसमें हमें रोबोटिक सर्जरी का ये फायदा रहा कि ये हिस्सा हम रोबोटिक सर्जरी द्वारा बड़ी आंत का काफी सारा हिस्सा निकाल पाए और उसका नॉर्मल रास्ता जो है लेटरिन का रास्ता उसको जोड़ पाए।
0: धर्मशाला में आज फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला द्वारा आयोजित इस विशेष अभियान की थीम स्टार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 रखी गई। कार्यक्रम में 100 से अधिक खिलाड़ी, प्रशिक्षु और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। साइकिल रैली के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके अलावा योग और स्कीपिंग रोप जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक विजेता पहलवान बबीता फोगाट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उनके साथ फिट इंडिया एम्बेसडर दीपक मिश्रा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। दोनों ने खिलाड़ियों और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करते हुए फिटनेस, अनुशासन और मेहनत का संदेश दिया। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावकों और प्रशिक्षकों से संवाद करने तथा अपने खेल से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर भी मिला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 MHz पर। प्रातः की 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगोष्ठी।
4: नमस्कार और सुप्रभात श्रोताओं। आज रविवार है और रविवार के दिन हम बात करते हैं साहित्य से जुड़ी विधाओं के संबंध में। और साहित्य क्या विधा में आज एक हमारी विशेष आमंत्रित अतिथि हैं, आपको रूबरू करवाएंगे, जो उच्च गुणवत्ता वाला लेखन का कार्य करते हैं, जिसमें कविताएं, कहानियां और अनेक प्रकार के लेख जो हैं उपलब्ध होते हैं। इनकी कुछ किताबें भी छपी हैं, कुछ कहानियों के संग्रह, कुछ कविताओं के संग्रह भी छपे हैं और इनको जो है विरासत में लेखन का कार्य मिला हुआ है। ये है अदिति गुलेरी। तो अदिति जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर नमस्कार।
4: तो अदिति, हमारे सुनने वालों को बताइए कि ये जो लेखन की विधा है आपको कैसे मिली है विरासत में, कैसे जब आपके पापा लिखते थे उनके बारे में कुछ बताइए पहले, फिर अपने बारे में। जी
5: सर, मैं डॉक्टर अदिति गुलेरी। मैं सर्वप्रथम आप सभी को यही बताना चाहूंगी कि मेरा जन्म डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी और श्रीमती कुसुम गुलेरी जी के घर में हुआ और हमारा गाँव गुलेर था और पिताजी यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में नौकरी करते थे। तो फिर हम सब गुलेर से यहाँ पर शिफ्ट हो गए, लेकिन गांव हमसे कभी छूटा नहीं। गांव में आज भी हमारी रूह बसती है। और साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि लेखन सच में जैसा ठाकुर सर बोल रहे हैं कि विरासत में मिला है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, डॉक्टर पीयूष गुलेरी, डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी, श्री गिरधर योगेश्वर और हमारे घर के सदस्य सभी जो विरासत में लेखन लेकर चल रहे हैं, मैं उस परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और विरासत में जीन्स में मुझे वो चीज जो है वो अपने आप जो है वो मुझे परिवार से मिली है, इसके लिए मैं ईश्वर की बहुत ही धन्यवादी हूँ सर
4: जी। तो अदिति जी, हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं की जानकारी के लिए ये बताइए कि आपने जो है लेखन का कार्य जो है कैसे शुरू किया, कैसे आप में जो है ये इच्छाएं जागी, कैसे आप उत्सुक हुई। जी
5: जी सर। सर ऐसा था कि जब मैं बहुत ही छोटी थी तो मुझे पापा अपनी छाती के ऊपर सुलाकर जो कविताएं वो लिखा करते थे, जो बाल गीत वो लिखा करते थे, तो फाइनल करते करते वो सारे गीत जो थे वो अपनी छाती पर मुझे सुलाते सुलाते वो लोरियों की तरह सुनाते थे। और वो लोरियां न जाने वो बाल कविताएं, वो बाल गीत कब मेरे कानों से होते हुए दिल में उतर गए और मुझे सच में पता ही नहीं था कि मैं उन कविताओं को पढ़ते पढ़ते या बाल गीतों को सुनते सुनते जो है मैं कभी लिखने में आ जाऊंगी। और साथ ही साथ सर, जो उनके मित्र थे वो हमारे घर में आते थे और घर में ही कभी गोष्ठियां होती थीं, वहीं पर ही जैसे यहाँ पर कभी मेले होते थे तो रात जब भी वो घर पे आते थे तो फिर वो वहां पर बैठकर अपनी कविताएं सुनाते थे और हम बच्चे जो थे वो उन कविताओं को सुन सुनकर जो हास्य कविताएं होती थीं हम बहुत खुश होते थे। और सच में यानी कि हमें परिवार के माहौल के साथ साथ सुनने का बहुत अवसर सौभाग्य जो है वो मुझे उस समय के वरिष्ठ साहित्यकारों से मिला।
4: जी तो आपके पिता श्री का जो है लेखन तो हमारे पास है, उनकी भेंट वार्ताएं भी हैं। अपने बारे में बताइए कि आप जो हैं, जैसे आपने उनसे सीखा, कहते हैं कि विरासत में मिली होती है कुछ चीजें जो है, आदमी जो है जिस माहौल में, बच्चा जिस माहौल में पलता बढ़ता है उसी माहौल का असर जो है उसके ऊपर देखने को मिलता है। तो ये चीजें आप में भी देखने को मिली। तो हर किसी की एक तस्वीर होती है, घर में परिवार के सदस्यों की भी अलग तस्वीर होती है, तो वैसे ही जो है आप में और आपके पापा में जो है लेखन के कार्य में जो है क्या कुछ भिन्नताएं थी, क्या कुछ उनसे सीखा आपने, क्या कुछ उन्होंने कभी काफी बढ़ाई की होगी आप।
5: जी सर। सर ऐसा था कि जैसे मैंने कहा मैं पांचवी कक्षा में एक पहली बार कविता लिखी थी आतंक, तो वो मैंने कोशिश की ऐसे ही डायरी में और मैं पापा के पास लेकर गई और मैंने उनको दिखाई कि पापा कैसी बनी है ये कविता, और वो कविता नहीं थी, वो यानी जिसको हम कह सकते हैं कच्ची सी कविता थी, और उन्होंने उस कविता पर इतनी तारीफ कर दी कि वो उस तारीफ ने मेरा यानी सफर जो था वो दूसरी तरफ को कर दिया, और मुझे खुशी हुई कि पापा को अगर मेरी कविता पसंद आई है, और बेटियों का तो वैसे ही पिता के साथ बहुत लगाव होता है, तो उन्होंने वो कविता यानी मेरे लिए मील पत्थर साबित हुई, और उस कविता के बाद ही मैंने कविताएं लिखना शुरू की। और मैं सर बताना चाहूंगी कि जब मैं कक्षा आठ

0: में थी तो मैंने बाल हंस में एक कविता अपनी भेजी थी बचपन से
1: जी
0: रिलेट, तो और वो कविता जो थी वो प्रकाशित हो गई, यानी 8वीं कक्षा के विद्यार्थी की अगर कविता प्रकाशित हो जाती उस समय तो वो बहुत बड़ी बात होती
1: जी यानी
0: थी।
1: कि आसमान पर उड़ने लगता है
0: जी
1: इंसान।
0: जी
1: जी
0: सर, तो फिर पिताजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे ये कहा कि यार मैं अपनी कविताएं जब भेजता हूँ मेरी तो प्रकाशित नहीं होती, मैं तो इतना बाल कविताएं लिखता हूँ, कहानियां लिखता हूँ, परंतु तुम्हारी कविता छप गई, मधुमती में तुम्हारी कविता छप गई और मेरी कविताएं नहीं आई।
1: जी
0: तो मुझे लगा कि नहीं पापा ऐसे मजाक कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि शायद वो एक प्लेटफॉर्म, एक मंच जो था वो मुझे मैगजीन में भी मिला।
1: जी जो हमारे माता होते हैं उनके लिए जो है शिष्य और पुत्र जो है वो अगर ऊंचाइयां छूता है तो उनको जो है एक बहुत अच्छा एहसास होता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जो है आपके पिताजी को भी अच्छा लगा होगा कि कम से कम मेरी जो है छप रही है तो मेरी बच्ची की भी छप गई कहीं ना कहीं, तो बहुत अच्छा लगा होगा। उस वक्त जो है उनका जो रवैया था किस प्रकार का था, क्या कुछ कहा उन्होंने?
0: जी वो बहुत खुश हुए और साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये कहा कि जो भी तुम लिखती हो उसको तुम डायरी में लिखो, ये नहीं है कि तुम बस पर्चियों में लिखो और उनको फेंक दो, तो इनको संभाल के रखो। और फिर मुझे डायरी मिली और फिर मैं उसके ऊपर लिखने लगी। और जब भी कार्यक्रम होते थे तो पापा के कवि सम्मेलनों में भी मुझे जाने का सुअवसर मिलता था, तो जब मैं सुनती थी तो सुनते सुनते वो मुझे मौका देते थे जो भी वहां पर होते थे कि नहीं तुम भी सुनाओ, तो बस सुनाते सुनाते फिर आगे से आगे चलते गए। और इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य में ही मैंने एमए किया, शोध कार्य मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से, एमए पीएचडी मेरी वहीं की थी। तो जिस समय सर मैंने विषय लेना था शोध का भी, तो मैं श्रोताओं को भी बताना चाहती हूँ क्योंकि ये संदेश एक पिता का नहीं है, ये संदेश एक गुरु का भी है। और मैं ये चाहती हूँ कि श्रोताओं में बहुत सारे लोग आज इस समय हमारे साथ जुड़े होंगे, तो मैं यही कहूंगी कि वो उनका मैसेज हर घर तक जाए कि जो पीएचडी है, जो शोध कार्य है, वो कट कॉपी पेस्ट करना हो। और हिमाचल के बच्चे अगर हिमाचली साहित्य को बढ़ावा नहीं देंगे तो कोई और उस साहित्य को बताएगा नहीं,
1: जी
0: आगे तक लेकर नहीं जाएगा। तो हिमाचल के बच्चों से यह अनुरोध रहेगा जो शोधार्थी हैं कि वो हिमाचल के साहित्य के लिए कुछ करें। कट कॉपी पेस्ट के पीएचडी के वो बहुत विरोधी थे, तो उन्होंने जब मुझे विषय देने की बात आई तो मेरी गाइड थी पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नीरजा सूद मैम,
1: जी
0: तो उन्होंने सर यही कहा कि आप विषय जो है वो उनके साथ विचार विमर्श करें और हम उसी विषय के ऊपर जो है वो आपको शोध कार्य करवाएंगे।
1: जी तो ऐसे में जो है लेखन कार्य जो करती हैं आप उसमें जो कविताओं के संबंध में बात
0: जी
1: करेंगे, पहले तो कविताओं में जो है आपको जो अच्छी लगती हो कविता उसका जिक्र करना
0: जी
1: चाहेंगी?
0: जी सर, सर कविताओं का ऐसा है कि जैसे एक माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, तो एक लेखक के लिए उसकी कहानियां या उसकी कविताएं जो हैं वो सभी बहुत अच्छी, बहुत प्रिय होती हैं। लेकिन परिवेश जो है वो उन कविताओं के सभी के अलग अलग रहे हैं, चाहे वो गांव के ऊपर हैं, चाहे वो परिवेश के ऊपर हैं, चाहे वो बच्चों के ऊपर हैं। बाल साहित्य पर मेरा शोध कार्य है तो मैंने बच्चों के लिए भी कविताएं की हैं, लिखी हैं, और साथ ही साथ मैं व्यक्तिगत भी कविताएं लिखती हूँ। जब मुझे कुछ दुखता है, चुभता है, तो फिर मैं फिर कलम का सहारा लेती हूँ, कहती किसी से कुछ नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि एक अवसाद को निकालने का, एक खुशी को निकालने का ये जो कलम है ये सबसे बड़ा जो है वो शस्त्र जो है वो होती है।
1: जी अब बाल गीतों से बचपन से शुरू करते हैं, तो बाल गीत जो है आपने किस प्रकार के लिखे हैं?
0: जो पहली ही कविता है जिसे मैंने पापा से, डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी से सुना था, और उसी कविता के साथ साथ मैंने धीरे धीरे जो है वो कविताएं लिखना शुरू की थी। तो पहली कविता थी उनकी रजिया चली बाजार। रजिया बेटी चली बाजार, रजिया बेटी चली बाजार, घोड़े पर है आज सवार, कपड़ों के हैं क्या ही कहने, कपड़ों के हैं क्या
1: क्या
0: ही
1: ही कहने,
0: कहने, सुंदर पहने इसने गहने, देखे इधर उधर खुशहाल, घोड़े की है मदमस्त चाल, रजिया बेटी चली
1: चली
0: बाजार,
1: बाजार।
0: घोड़े पर है आज सवार, पापा खींचो जरा लगाम, पापा खींचो जरा लगाम, दिल कर आया खाऊं आम, आमों के थे ऊंचे दाम, उसने लिया कलेजा थाम, पापा बोले बिटिया रानी, पापा बोले
1: बिटिया
0: बिटिया
1: रानी,
0: रानी, टॉफी खाकर पी लो पानी, बढ़िया खूब खिलौने ले लो, बढ़िया खूब खिलौने ले लो, घर में चलकर जी भर खेलो, बोली रजिया पापा आओ, सांझ ढली अब घर पहुंचाओ, रजिया बेटी चली बाजार, घोड़े पर है आज सवार।
1: जी बहुत तो अच्छे
0: जी सर,
1: क्योंकि बचपन का जो है एक बच्चे की जो ख्वाहिश होती है किस प्रकार जो है माता पिता अगर पूरे करती हैं तो खास करके मेले में जाते हैं कहीं त्योहार में जाते हैं तो उसका आनंद जो है एक बिटिया कैसे करती है कैसे जो है उसको आनंद आता है उसका थोड़ा सा बयान जो है इसमें है और एक माता और पिता की जो जा रहे हैं उसमें वो भी शामिल है।
0: जी
1: इसके अलावा जो है जैसे ही बड़ा होता है बच्चा उसके उपरांत जो है कुछ ऐसा है कि आपने जैसे स्कूलों में जो है कुछ लिखी होंगी जो अपने बचपन में लिखी होंगी कोई ऐसा है जिसको पिताजी ने डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी जी ने जो है कहीं ना कहीं संभाला होगा उसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगी।
0: जी सर, सर मैंने एक कवि की पुत्री थी मैं तो कवि की बेटी ही आपके समक्ष रख रही हूँ और वही सुनाऊंगी और मैंने उनको सुनाई थी ये कविता। तो कविता है कवि की बेटी। बिन जिनके सहारे मैं अलक्षित अव्यवस्थित, बिन जिनके सहारे मैं अलक्षित अव्यवस्थित, बिन जिनकी बाहों के सुरक्षा कवच बिन मैं अधूरी अपाहिज, सिर नवाती हूँ पूछती हूँ जिनके दिए सारस्वत संस्कार, जिन्होंने हाथों से थामा, जिन्होंने हाथों से थामा कदमों से नापा, जिन्होंने लबों से बोला नजरों से तोला, जिनसे जो चाहा वो बेहद पाया, जिनसे जो मांगा बेहिसाब पाया। हमेशा की तरह लिखते ही जाएं कवि पापा, हमेशा की तरह लिखते ही जाएं, कुछ कुछ सुनाने को अपने पास बुलाएं, हमेशा की तरह लिखते ही जाएं, कुछ कुछ सुनाने को अपने पास बुलाएं, कलम से झगड़े, कलम से झगड़े, भाई से लिपटें, मम्मी से रूठें, बेटी से भी पात्र को ढूंढें, और कागजों के गुम होने पर अक्सर डांट खाएं, इन कागजों के लिए ही अक्सर बुरे बन जाएं। कसम से मजा भी आता है, प्यार भी आता है, तो कभी गुस्सा भी आता है, कवि की बेटी होकर फिर भी हर कुछ अच्छा लगता है कवि की बेटी होकर।
1: जी बहुत अच्छे।
0: धन्यवाद सर। अब मैं आपको सर एक गांव के ऊपर अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ। हमारे गांव गुलेर पे ही एक कविता है। गांव कभी छूटता नहीं, जहन दिल से होता हुआ कभी रूह से गुजरता हुआ, मेरा गाँव आज भी बचपन के आंगन सा सपाट नजर आता है। गांव कभी छूटता नहीं, जहन दिल से होता हुआ कभी रूह से गुजरता हुआ, मेरा गांव आज भी बचपन के आंगन सा सपाट नजर आता है। रिश्ते अपनों से गुंथे थे, गांव के घर घर घरों से बंधे थे, किसी घर से दूध किसी घर से लस्सी, किसी घर से फूल किसी घर से सब्जी, हम दादी बीजी के कहने पर कैसे कैसे दौड़े दौड़े लाते थे, हर त्योहार को कैसे मजे मजे हम सब बच्चे मनाते थे। दादा दादी का प्यार, ताया ताई चाचा चाची बुआ सबका दुलार, दादा दादी का प्यार, ताया ताई चाचा चाची बुआ सबका दुलार, हम ताया या चाचा के बच्चे चचेरे न थे, हम सब जैसे सगे एक दूजे के लिए बच्चे ऐसे सच्चे थे। बचपन का वो आम पीपल का पेड़ हम भाई बहनों संग बड़ा हुआ, कभी खेला तो कभी उस संग मेला हुआ, गांव का मंदिर वो पानी वो कश्ती, कैसे दोस्तों संग वो अजब रेला भी हुआ, स्टेशन से बाजार नापते हुए बड़ों के गुस्से को अक्सर भांपते हुए, भरी गर्मी में हम यहाँ वहाँ नाचते हुए, कभी शरारत से हम एक दूजे से झगड़ते हुए, कैसे बचपन से यौवन और यौवन से आज यहाँ तक पहुँचते हुए, गांव से शहर तक आ गए, सब रिश्तों को हम गांव की दहलीज पर ही रख यहाँ तक आ गए, फिर भी गांव कभी छूटता नहीं, जहन दिल से होता हुआ कभी रूह से गुजरता हुआ। सर बचपन अगर हम देखें तो हमारे जो अभिभावक थे माता पिता थे उन्होंने बचपन बहुत अच्छे तरीके से जिया, उससे कम बचपन जिया हम लोगों ने, और हमारे बच्चे बचपन तो जी ही नहीं रहे हैं। हमारे बच्चे बचपन के नाम पर जो ऑनलाइन गेम्स हैं उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं, वही चला रहे हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं
1: सही रूप में जो है, वो प्रकृति के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं।
0: गांव के बच्चे आज भी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पीपल के पेड़ का पता है, उनको आम के पेड़ का पता है, उनको अमरूद के पेड़ का पता है ना। लेकिन जो हमारे शहर के बच्चे हैं अगर आप उनको ये कहेंगे ना कि इनमें से कौन से वाला पेड़ है तो वो आपको बता नहीं पाएंगे। और दूसरा सर, जब हमारा समय था तो मुझे याद है कि आजकल के जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को खाने के लिए चॉकलेट्स या बाकी चीजें आते थे, तो हमारे समय में मुझे याद है कि मेरे पिताजी जब महीने के बाद वो बाल भारती या बाल हंस या चंपक आती थी तो मैगजीन्स घर में आती थी
1: जी,
0: और हम मैगजीन्स को पढ़ते थे और वो मैगजीन 2 दिन में खत्म करके हम अगले महीने का इंतजार करते थे कि अगले महीने में वो मैगजीन आएगी और हम उसे दोबारा से पढ़ पाएंगे
1: जी।
0: तो वो रीडिंग वाली जो हैबिट जो है वो है नहीं है, साहित्य तो दूर की बात है बच्चों के लिए
1: जी। तो ऐसे में जो है आपने लेखन का कार्य किया है, कविताएं भी लिखी हैं जो अलग अलग प्रकार से प्रकृति से जुड़ी हुई हैं या आपकी अपनी जो गांवों के संदर्भ में जुड़ी हैं, उनमें से किसी का जिक्र करना चाहेंगे?
0: सर कविताएं हैं, जैसे मेरी किताब है एक बात वजूद की
1: जी,
0: काव्य संग्रह है और काव्य संग्रह सुनो ना और कहानी संग्रह बुद्धू का हीरा, तो इनमें जो परिवेश है वो ग्राम्य परिवेश भी है और शहरी परिवेश भी है, क्योंकि मैं इन दोनों ही परिवेशों में पली बड़ी हूँ तो मुझे यानी कि दोनों ही परिवेश जो है वो अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्राम्य परिवेश जो है वो मुझे बहुत ही छूता है। जब भी युद्ध होते हैं, युद्धों के ऊपर है, विनाश की नींव पर मानस की भीड़ पर, विनाश की नींव पर मानस की भीड़ पर, हृदयों की पीड़ पर जब भी युद्ध होते हैं, विनाश की नींव पर मानस की भीड़ पर, हृदयों की पीड़ पर जब भी युद्ध होते हैं, एक देश नहीं एक भेष नहीं जलता अपितु जलती है लाखों आंखें लाल सलाखें
1: जी।
0: सदियों पीछे धकिया जाती हैं संपूर्ण जाति बन जाती है फिर नई हिरोशिमा नई नागासाकी। प्रकृति जो प्रलय दिखाए, प्रकृति जो प्रलय दिखाए वो फिर भी सही जाए, प्रकृति जो प्रलय दिखाए वो फिर भी सही जाए, मानुष की बनाई प्रलय गाथा अब देखी ना जाए। सरहद के आर या फिर उस पार, सरहद के आर या फिर उस पार, निर्दोष जनता जो चढ़ा दी जाती है राजनीति की सूली पर, एक तरफ फैला जो जब नरसंहार, कैसे मनाएं बोलो फिर हम कोई त्योहार। विषधर आओ मिटाओ आकर फिर ये हाहाकार, फैली जो है सब तरफ चित्कार। तो सर एक कविता ये थी
1: जी। तो अब कविताओं से अब लेखन कार्य की तरफ चलते हैं
0: जी सर।
1: लेखन कार्य में जो है किस प्रकार का लेखन कार्य किया है आपने जो है, जिसमें जो है मानवता के लिए कुछ हमारे समाज से जुड़ा हुआ, हमारे जो हिमाचल के परिवेश से जुड़े हों, परिधानों से जुड़ा हो, या जो है इस प्रकार की कुछ हमारी संस्कृति से जुड़ा हो, इस प्रकार की कुछ कहानियां लिखी है जिसमें कोई जिक्र करना चाहे आप?
0: जी सर। सर जब भी साहित्य लिखा जाता है तो साहित्य तो समाज का दर्पण है
1: जी,
0: है ना। तो समाज में जो अच्छा हो रहा है वो भी हम लिखते हैं, जो बुरा हो रहा है वो भी हम लिख रहे हैं, लेकिन साहित्य जो है वो एक आत्मिक विश्रांति है। अगर आदमी कहीं थक के हार के आता है तो वो साहित्य की गोद में आता है, और साहित्य की गोद अगर आकर उसे फिर नकारात्मकता की ओर ले जाए तो वो सही नहीं होता। तो कोशिश ये रहती है कि कोई भी कविता है या कोई भी कहानी है वो समाज को संदेश दे, अगर उस कविता में या उस कहानी में संदेश नहीं है तो उस लेखन का कोई भी
1: मायने नहीं है जी,
0: कोई उपयोगिता नहीं है उस चीज की।
1: तो ऐसे जो है कोई आपने लिखा है जो कहानी जिसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहें?
0: कहानी लिखी थी मैंने
1: संक्षेप में,
0: जो एक जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम अपने घरों में काम के लिए रख लेते हैं, और एक बच्चा जो है वो ऐसे ही किसी दूर जिले से आता है, और वो बच्चा यानी कि जिस बच्चे को देखने आता है वो उस बच्चे से भी छोटा होता है, और उस बच्चे को मैंने उस कहानी में ये बताया है कि उस बच्चे को खाने का भी पता नहीं है, उसने वॉशरूम जाना है तो वो वॉशरूम भी नहीं जा पाता है, उसको अपना नाड़ा बांधने भी नहीं आता है, और वो बच्चा जो है वो उसको एक काम के लिए हम अपने घर में ले आते हैं। तो वो जो एक बाल श्रम है उसकी बात जो है वो उस कहानी में की गई है, और उस कहानी में अंत में जो वो लेकर आती है अपने काम के लिए उस लड़की को, अपने बच्चों को पालने के लिए, जब वो देखती है कि ये मेरे बच्चों से छोटी है, यानी उस माँ का दिल जो है वो दहल जाता है, और वो ये सोचती है कि उसकी बच्ची की माँ की क्या ऐसी त्रासदी रही होगी, क्या ऐसा दुख रहा होगा कि उसने अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को दूसरे के घर पर काम के लिए भेज दिया
1: जी।
0: तो उस कहानी में अंत ये किया कि उसमें वो लड़की जो है वो दोबारा से उसी के घर जो है वो भेज दी जाती है, लेकिन अफसोस ये होता है वो घर नहीं जाती, वो दोबारा वो देखी जाती है किसी और के साथ जाती हुई। तो उसमें जो है वो कहानी जो है वो अलग अलग मोड़ जो है वो लेती है
1: जी, तो इस कहानी को लिखने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? कुछ बाल श्रम से लिखा आपने या मन में हुआ कोई आपने
0: जी
1: कुछ
0: सर,
1: चित्रण
0: सर
1: देखा
0: जब
1: कहीं?
0: हम लोग यानी जो एक साहित्यकार है, लेखक है, जब वो बैठा भी होता है तो वो खाली नहीं बैठा होता है, वो अपने आसपास हर चीज को देख रहा होता है, महसूस कर रहा होता है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमें आपसी परिवेश में मिल जाती है। हम बस में जा रहे हैं, हम टीचर्स हैं, हम बसेस में जा रहे हैं, हम स्टाफ में बैठ रहे हैं, हम अपने घरों में बैठ रहे हैं, परिवारों में बैठ रहे हैं, हम कहीं फंक्शंस पे जा रहे हैं, धाम पर जा रहे हैं, तो हमें हर जगह कुछ ना कुछ जो है वो दिखता है। जो अच्छा है उसको हम थोड़ा उतना नहीं देखते, जो चीज चुभती है वो जो है वो फिर लिखी जाती है।
1: जी, वो एक मन में जो है बस जाती है कि ये कैसे हो गया, ये जो है इस पर कुछ लेखन कार्य हो सकता है ताकि मैं समाज को कुछ संदेश दे सकूं, ताकि जो है एक अच्छा लेखन जो है समाज को संदेश के रूप में मिले।
0: जी सर,
1: जी
0: जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें जो है वो मुश्किल होती है, हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती, तो हम गूगल भी करें तो वो गूगल भी बाबा हमें कुछ बता नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि अगर भगवान चाहते तो हमें और समय मिलता और हम सीखते, परंतु फिर भी इतना मन में जरूर है कि जो उन्होंने संदेश आदरणीय डॉक्टर पीयूष गुलेरी जी ने या पापा ने, डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी जी ने, या हमें जितने हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं हिमाचल के, जिनसे मैंने जो जो सीखा है, मेरी कोशिश होती है बीइंग टीचर, मैं एक अध्यापिका हूँ, तो मैं जिस भी क्लास में होती हूँ, जिस भी बच्चे को इंटरेक्ट करती हूँ, मैं डाइट कांगड़ा में भी थी या मैं जो भी सेमिनार्स में जाती हूँ, ट्रेनिंग्स में जाती हूँ, तो मेरी पीड़ा यही रहती है कि हमारी भाषा हिमाचली, हमारे साहित्य बचे, हमारी बोलियां बचे, हमारा कल्चर बचे, हमारे रीति रिवाज बचे, हमारा रहन सहन बचे। और मैं यही उन पेरेंट्स को बोलती हूँ, माता पिता को बोलती हूँ और आज श्रोताओं को भी बोलूंगी कि जो अगर आपके घर में पहाड़ी बोलता है तो आपको गर्व करना चाहिए कि ये हमारा बच्चा है जिसने इस पहाड़ी को, इस हिमाचली को, माँ बोली को बचा के रखा है।
1: जी बिल्कुल ऐसे ही
0: और
1: होना चाहिए।
0: यही हमारे यानी पिताजी से वही चीजें हमने सीखी हैं कि अपनी माँ बोली के लिए शर्म जो है वो नहीं होनी चाहिए और बड़े जोश शोर से जो है वो ये बात बोलनी चाहिए कि हाँ सांझो पहाड़ी होंदी है, कहने पहाड़ी बोलना भी चाहिए, इस शर्म नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कहने अगर कोई पहाड़ी बोल रहा था तो अंजो खुश होना चाहिए, अंग्रेजी बोलनी ने असा जड़े एडे यानी कि मान नहीं बनी सकते, बोलते जड़ा माऊ दा नहीं बने तिन्नी मासिया दा नहीं बनना।
1: बिल्कुल,
0: पहले माँ।
1: हम जैसे एक हिमाचली हम संदर्भ में कहें भोले भाले लोग होते हैं तो उस संदर्भ में जो लिया हुआ है कहीं न कहीं जो है थोड़ी सी कोताही भी करते हैं ताकि जो है हंसी मजाक भी बना रहे, तो ठट्ठा मजाक जो है एक हमारी जो प्रकृति है, हमें जो विरासत में मिला हुआ है, उससे जो है मनोरंजन भी होता रहे। तो लेखन के कार्य के लिए कोई भी कविता लिखनी है आपने, कोई भी संदर्भ लिखना है, कोई भी अपने कहानियां लिखनी है, तो ऐसे के लिए जो है माहौल होना जो आवश्यक होता है। पिताजी के घर में थी तो आपको जो है एक माहौल मिल गया था।
0: जी सर।
1: अब जो है अब शादी हो गई है, आपके जो पति देव हैं वो जो है एक पशु चिकित्सक हैं और बच्चे जो हैं एक नई पीढ़ी के हैं, तो ऐसे में जो है उनके साथ जो है तालमेल कैसे बिठाते हैं? कहीं ना कहीं उनको आपसे किंचित कहीं प्रभाव तो नहीं पड़ता है कि नहीं जी खाना तो बनाती नहीं है, खाना जल गया है या कुछ दूध उबल गया है, कहीं ना कहीं हर घर में लगी रहती है ये तो, लेकिन आपको कुछ होता है कहीं ना इस तरह का
0: जिले
1: शिकवे रहते हैं थोड़े बहुत?
0: जी सर। सर जब मैं विश्वविद्यालय में थी तो वहाँ पर जो वहाँ की पत्रिका होती थी वहाँ पर मैंने संपादक का कार्य किया और मेरी जो कविताएं होती थी वो सभी वहाँ पर जो पुस्तकालय था उसके बाहर जो पटल होता था उसके ऊपर मेरी कविताएं जो थी वो हर हफ्ते जो थी वो वहाँ पर अंकित होती थी पंजाब विश्वविद्यालय में।
1: अच्छा जी।
0: जी सर। तो यानी कि मैं अपना विश्वविद्यालय तक बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन वही बात आती है, विवाह हो गया और जिम्मेवारियां बढ़ गई और धीरे धीरे मैंने लिखना कम कर दिया। फेसबुक को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, ऐसे ही एक अकाउंट बनाया गया और उसमें मैंने अपनी ऐसे ही एक कविता जो थी वो वहां पर डाल दी।
1: जी, तो एक अकाउंट आपने बनाया था या बच्चों ने बनाया?
0: नहीं,
1: था
0: सर वो मैंने बनाया था, बच्चे तब तक आए नहीं थे,
1: आए नहीं थे।
0: तो
1: जी।
0: फिर सर उस समय मैंने वो कविताएं जो थी वो वहां पर एक दो डाली और वहां पर जब कमेंट्स आए तो मुझे जो है वो दोबारा से वो जो संजीवनी वो मिल गई, मुझे जीवनदान मिला और मैंने फिर लिखना दोबारा से शुरू किया। यानी कि
1: दोबारा लिखने का जो है प्रेरणा मिल गई,
0: प्रेरणा मिल गई मुझे वहाँ से। और फिर मैंने वो जो अपनी पुरानी डायरीज थी वो निकाली, सब कुछ किया, और उसके बाद मैंने फिर अपनी बाद में आकर कविताएं प्रकाशित की। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि परिवार के ये सहयोग के बिना संभव नहीं होता
1: जी, इसमें कोई
0: तो मैं इसमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे पति डॉक्टर राजीव शर्मा जी वो बहुत ही साथ देते हैं, और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उनका भी समय चुरा कर जो है वो साहित्य में दे देती हूँ,
1: समर्पित करती हूँ
0: जी, और बच्चों का समय भी चुरा कर जो है वो मैं साहित्य को देती हूँ। तो बच्चों को भी अब ये मालूम है कि अगर हमारी मम्मा लिख रही है तो वो उस कमरे में नहीं आते कि मम्मा डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर मम्मा नाराज होकर डांटेगी हमें
1: जी। तो इसीलिए पति भी डरते हैं कि जाए ना कमरे
0: नहीं,
1: में
0: नहीं सर वो
1: तो
0: ऐसा
1: कहीं
0: नहीं है,
1: कहीं फर्क पड़ता ही
0: नहीं
1: है।
0: सर कोशिश ये होती है कि जब मैं अकेली हूँ मैं तभी लिखूं। और दूसरा ऐसा है कि हर कमरे में अपना एक स्लिप पैड पड़ा होता है, रसोई घर में भी। और मैं आपको मजे की बात ये बताऊं कि जब मेरा सुबह स्कूल का टाइम होता है, जाने का टाइम होता है, उस समय थॉट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं,
1: विचार आते हैं,
0: विचार आते हैं कि मैं लिखूं।
1: खाना बना रहे होते हैं आप, लिखने का भी कर रहा है उस वक्त, जल्दी जाने का भी होती है।
0: उसका एक समाधान ही होता है कि बस वो लिख लेती हूँ थोड़ा सा, इसको बाद में मैं कर लूंगी
1: जी, यही लेखन का कार्य होना चाहिए।
0: तो अगर कोई लेडीज लिख रही हैं या लड़कियां लिख रही हैं या बच्चे लिख रहे हैं तो अपने थॉट्स को अपने विचारों को वो अंदर ही अंदर ना दबाएं, उनको वो लिखें, जरूर लिखें, अपनी कोई कॉपी पे लिखें या डायरीज अपनी बनाएं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का
1: जी। क्योंकि देखिए ना कहीं जो जो विचार आपके अभी आए हैं हो सकता है कि थोड़ी देर बाद धूमिल हो जाए,
0: वो धूमिल हो जाते हैं सर,
1: तो उसमें जो आपके पास एक आपने कोई उसका अंश रखा हुआ है, एक थोड़ा सा लिखा हुआ कुछ शब्द लिखे हैं तो आपको जो है पूरा मंजर याद आ जाता है।
0: और सर अगर
1: ये जो है मुझे इस पे सोचा था मैंने, इस पे ये लिखना
0: जी,
1: है जी।
0: और कभी गुम हो जाए तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो क्या पीड़ा होती है, यानी वो इतनी छटपटाहट होती है कि वो कहाँ चला गया
1: जी। तो ये देखिए जिंदगी के पड़ाव होते हैं, जरूरी भी होता है कि आपका एक अमूल्य क्षण होता है जो जिंदगी में आपने किसी चीज को समर्पित किए होते हैं। आपने जो है जैसे लेखन के कार्य को समर्पित किए हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये पीड़ा अवश्यम भावी है कि आप जो है ये अगर कोई छूट जाता है, कोई चीज रह जाती है तो जो आपने सोचा था वो रह जाता है, तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो जरूर होगी क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। तो ऐसे में जो है जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि लेखन के कार्य में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन किन सावधानियों को जो है मद्देनजर रखना होता है, ताकि जो है कविता हो या हास्य कवि हो या बाल कविताएं हो या जो है और हास्य की कविताएं हो या लेखन का दूसरा कार्य हो तो कैसे इसको अंजाम देना आवश्यक होता है जी।
0: जी सर, लेखन के लिए सर जो मेरा मानना है, मुझे ये लगता है कि जो हमारे विचार हैं, जो जिस समय जैसे आ रहे हैं उनको हमें वैसा लिख देना चाहिए, हमें उसमें कोई मुखौटा जो है वो नहीं लगाना चाहिए कि हम कुछ बताने के लिए जो है या अपने आप को अच्छा शो करने के लिए जो है वो लिख रहे हैं। कमी हम में भी होती है, कमी दूसरे में भी होती है, तो हमें उस चीज को संतुलित करके जो है वो लिखना होता है। दूसरा, हमारे पास वो शब्द ऐसे होने चाहिए जो आम व्यक्ति को भी समझ आ जाए, विशेष व्यक्ति को भी समझ आ जाए, आम बोलचाल की भाषा के वो शब्द होने चाहिए, बहुत कठिन शब्द नहीं होने चाहिए, सरल सहज सी भाषा होनी चाहिए। ऐसी जो भाषाएं कुछ होती हैं, कुछ ऐसी कविताएं होती हैं जो हमारे ऊपर से निकल जाती हैं, तो वो संदेश क्या देंगी? संदेश वही देंगी जो बहुत सरल सहज भाषा में लिखी होंगी
1: जी, यानी कि आम जनमानस की आम भाषा में, सादी भाषा में लिखी हो तो कहीं न कहीं वो मन में उतर जाती है कि ये कहा था, ये चीजें हुई थी। तो ये चीजें जो है कहीं न कहीं जो है बातें जो है ये बातें एक गुर की तरह काम करती हैं, और जिससे जो है कहीं न कहीं हमारा जीवन जो है सार्थक बन सकता है।
0: हाँ जी।
1: तो डॉक्टर आदित्य गुलेरी जी, आपने हम संग जो है अपने काव्य लेखनों के संबंध में, कविताओं के संबंध में जो है बहुत अच्छी जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:33 हुए हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस सुहाने सफर में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको ये गीत सुनवा रहे हैं जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, एक दूजे के लिए। इस फिल्म का ये गीत है।

फिल्म सरगम से ये गीत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। जोनी मेरा नाम फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले की।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.

फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

जब जब फूल खिले फिल्म के इसी गीत के साथ श्रोताओं, आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले फिल्म लक्ष्य से ये देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं शंकर महादेवन, सोनू निगम और साथियों की।

0: कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को।

अंजाम फिल्म से सैनिक भाइयों अभी आपने ये गीत सुना। अलका याग्निक ने इस गीत को गाया था। कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

कसूर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सैनिक भाइयों अलका याग्निक की आवाज में। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म का नाम है अधर्म। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की।

इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब अपनी रेडियो दोस्त सचिता को दीजिए अनुमति। जय हिंद। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल सभा।

सभी बच्चों को जय हिंद। रेडियो दीदी हाजिर है सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा लेकर, और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रवीण दीदी का प्यार भरा नमस्कार।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का आपके अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में। और दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे उन सभी श्रोताओं का जो एक बार फिर से हमारे इस छोटे से सफ़र के हम सफ़र बन गए हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत।

0: तो नन्ही दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये चंद पंक्तियां हमारे सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। बच्चों, मेहनत की आदत जब बन जाती है तो हालात खुद रास्ता देने लगते हैं। जो आज थक कर भी रुकता नहीं, कल वही नाम रोशन करता है। तो छोटी सी एक वही बात हम आपको कार्यक्रम की शुरुआत में फिर से दोहरा रहे हैं कि मेहनत का गुण आपने कभी छोड़ना नहीं है। जी हाँ, एक छोटी सी बात है, छोटा सा एक अच्छा गुण जिसे हम कह सकते हैं, वो है मेहनत, संघर्ष करना। और जब एक बच्चा अपनी लाइफ में मेहनत को अपना लेता है, मेहनत के गुण को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेता है ना, तो यही मेहनत आपको एक अच्छा रास्ता भी दिखाती है और आपके जीवन को रोशन भी कर सकती है। तो नन्हे दोस्तों, कार्यक्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके साथ मौसम की। जी हाँ, मौसम की बात हम कर रहे हैं तो भाई, गर्मी बहुत सारी बढ़ गई है ना। पता नहीं क्या हो गया है, ये भी बिल्कुल आपकी तरह हो गई है, नटखट शरारती, बात ही नहीं सुनती है कि इतना मत सताओ सूरज देवता। जी हाँ, आपको पता है सूरज देवता जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो हालात ठीक नहीं होते हैं, थोड़ा तो तरस खाओ हम मासूम बच्चों पर। सच में बच्चों, गर्मी ने तो हालात बिगाड़ दिए हैं, पर आपने भी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है भाई। गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो आपको थोड़ी बहुत ज़रूर सताएगी, लेकिन इस गर्मी भरी लू से हमें कैसे बचना है, बस इस बात का आपने थोड़ा ध्यान देना है। और खूब सारा पानी आपने पीना है, ये तो हम आपसे हमेशा ही कहते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम की जब हम बात करते हैं तो इस मौसम में पानी की मात्रा को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। और हाँ नन्हे दोस्तों, खाने की अगर हम बात करते हैं तो गर्मी के मौसम में बाहर का तला भुना खाना आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। घर में बना हुआ हल्का व सुपाच्य भोजन ही आपने करना है। खूब सारा पानी आपने पीना है, वो भी साफ स्वच्छ जल आपने लेना है। खूब सारा सलाद आपने खाना है। और एक ज़रूरी बात आपने नोट कर लेनी है कि बिना बजे घर से बाहर आपने धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है। और हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़रूरी काम आपको है तो घर के किसी बड़े सदस्य को आपने साथ में लेकर जाना है। अदरवाइज जितना हो सके आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। मतलब कि अगर धूप में आपका कहीं बाहर जाने की कोई योजना है तो भाई, इस योजना को आपने थोड़े दिनों के लिए डिले कर देना है, यानी जब तक मौसम अच्छा नहीं हो जाता है आपने बाहर कभी भी नहीं जाना है। और छाते का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। तो बच्चों, ये तो थी मौसम की बात, गर्मी की बात, कि आपने अपना ध्यान रखना है और बहुत सारे सलाद का पानी का आपने इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ, बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहना है। सुबह की धूप आप ले सकते हैं, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो भाई, सुबह की धूप आपके लिए बहुत ही अच्छी है। चलिए, अब रेडियो दीदी अपनी बातों को दे रही है थोड़ा सा विराम, नहीं तो आप ये कहेंगे अरे दीदी आज आपको क्या हो गया है, आते ही आप इतना बोल रहे हो, इतना सारा पानी हमें आते ही पिला दिए, इतना सारा सलाद हमें आते ही खिला दिया और हमारे खाने पे आपने ताला चाबी लगा दिया। ऐसे थोड़ी नहीं होता है दीदी। हाँ, ऐसे नहीं होता है। अरे भाई, ये तो थी आपकी सेहत की बात जो रेडियो दीदी ने आपके साथ की। और अब हम कर रहे हैं आपके साथ थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि हमने पहुंचा दिया है अपने नन्हे दोस्तों की रेडियो सेट्स पर एक प्यारा सा गीत। तो थोड़ा सा आपने डांस करना है और पुनः लौट कर आना है हमारे पास।
1: ये वो दोनों कहते थे, और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: Hey girls, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
4: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है, सुना नहीं? नो शेयरिंग।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का और सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में एक बार हम फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम बाल सभा हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और स्टूडियो में है इस समय नन्हे मुन्ने बच्चों की रेडियो दीदी प्रवीण। तो अब दीदी कार्यक्रम में जानकारी साझा करेगी राष्ट्रीय मंडल दिवस के बारे में। बच्चों, पहले हम आपको ये बताएंगे कि राष्ट्रमंडल दिवस क्यों मनाया जाता है। बच्चों, हर वर्ष 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 मई को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर यह दिन मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। और नन्हे दोस्तों, ये दिवस उन सभी देशों द्वारा भी मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। और आपको हम ये भी बता दें कि विश्व भर में राष्ट्रमंडल दिवस अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है, लेकिन भारत की, अपने देश की हम बात करें तो भारत के अलावा कुछ अन्य देशों में इसे प्रतिवर्ष 24 मई को ही मनाया जाता है। नन्ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानवता को बढ़ावा देना और

साथ साथ में इन देशों के बीच एकता को स्थापित करना भी है। इससे पहले इस दिन को एम्पायर डे के नाम से भी जाना जाता था, जिसे महारानी विक्टोरिया की जन्मदिन यानी 24 मई 1819 के उपलक्ष में शुरू किया गया था, लेकिन सन 1858 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया। बच्चों, इस दिन को मनाने का उद्देश्य सभी नागरिकों के बीच शांति, समानता और लोकतंत्र जैसे साझा मूल्यों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही ये दिवस सभी देशों के बीच आपसी सहयोग, एकजुटता और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। अब कार्यक्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और साझा करते हैं अपने नन्ही दोस्तों के संग अमर जवान ज्योति के बारे में जानकारी। बच्चों, अमर जवान ज्योति भारतीय सशस्त्र बलों के वीर शहीदों के सम्मान और उनकी स्मृति के जलने वाली एक अमर लौ है। नन्हे दोस्तों, सन 1971 के युद्ध के बाद देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जनवरी 1972 को नई दिल्ली के इंडिया गेट पर इसका उद्घाटन किया था और नन्हे दोस्तों, इसके प्रतीक के रूप में काले संगमरमर का एक चबूतरा बनाया गया है। और आपको हम ये भी बता दें कि जिस पर उल्टी रखी हुई राइफल L1A1SLR और उसके ऊपर सैनिकों का हेलमेट रखा हुआ है। चबूतरे के चारों कोनों पर चार अमर ज्योति जलती रहती है। और बच्चों, 21 जनवरी 2022 को अमर जवान ज्योति की लौ को इंडिया गेट के स्थान से स्थानांतरित करके पास ही बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अमर लौ में विलय कर दिया गया। आपको हम ये भी बता दें नन्हे दोस्तों कि अमर ज्योति हर उस सैनिक को सलाम करती है जिसने भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसे अमर जवान ज्योति का नाम दिया गया। कार्यक्रम में लेते हैं हम एक और संगीतमय अंतराल और पहुंचा दिया है अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की रेडियो सेट्स पर एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। दीदी के सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग और प्रोग्राम सुन रहे हैं बाल सभा। जी हाँ, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। बच्चों, समय का सच में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। अभी थोड़ा ही समय पहले दीदी स्टूडियो में आई थी, आपके साथ बहुत सारी बातें कर रही थी और जी घड़ी चलती रही और हम पहुंच गए कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं रोचक जानकारियों की और अगर आप तैयार हैं तो बिल्कुल रेडियो दीदी भी तैयार है जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए। एक बात कहूँ नन्हे दोस्तों, अपनी लाइफ से यानी अपने जीवन से अगर आप नकारात्मक विचारों को, नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक आसान सा उपाय हम आपको बता रहे हैं। आपके अंदर कोई बुरे विचार हैं, कोई नेगेटिविटी है, कोई बात है जो लगातार आपको परेशान कर रही है, तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि उन सारे नकारात्मक विचारों को, बुरी बातों को एक कागज़ पर लिख देना है और डाल देना है कूड़ेदान में। ऐसा करने से आपका मूड अच्छा हो जाएगा और आपके अंदर जो भी बुरे विचार हैं, जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है ना, वो आपको छोड़कर बाहर निकल जाएगी। नन्ही दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधु थी। नन्ही दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है और राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। तो ये थी आज की रोचक जानकारियां जो रेडियो दीदी ने पहुंचाई अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों तक और उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अगर आपने ध्यान से आज के कार्यक्रम को सुना होगा तो बहुत सारी तो नहीं, लेकिन हाँ, दो चार अच्छी अच्छी बातों को आपने अपने प्यारे से छोटे से दिमाग में ज़रूर भर कर रखा होगा। क्योंकि रेडियो दीदी हमेशा यही कहती है बच्चों की हर एक अच्छी बात लाइफ में हमें कहीं कहीं काम जरूर आती है। तो चलिए अब चलते चलते एक और खूबसूरत सा गीत हम आपके लिए भेज रहे हैं।

इसी खूबसूरत से गीत के साथ अब जाने से पहले हम आपको बता देते हैं आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे डॉक्टर जितेंद्र पॉल सिंह और तकनीकी सहयोगी के रूप में हमारे साथ रहे विपिन कुमार। अब इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ रेडियो दीदी प्रवीण को दे कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। दिन का 1 बजने को है। अब पहले हिंदी में समाचार व 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio today held wide-ranging discussions in New Delhi, reaffirming the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlining key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Briefing the media after the meeting at Hyderabad House, Dr. Jaishankar said the talks over lunch focused on the latest developments in the Gulf region, while the Indo-Pacific remains an important priority ahead of the Quad meeting. The External Affairs Minister stressed the importance of concluding a trade agreement between India and the United States at the earliest. He welcomed the recent expansion in energy trade and said diversified energy supplies are central to India's energy security.
3: In terms of the political understanding between India and the United States, we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. And in our meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia.
2: U.S. Secretary of State Marco Rubio described India as one of the United States' most important strategic partners.
4: A strategic partnership is something very different. It's something much broader than that. And you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world.
2: He said both countries have suffered due to terrorism and added that India and the U.S. are strategically aligned on key issues that will shape the coming century. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has secured a massive lead in the 11th round of counting for the Faulta Assembly re-poll. Counting is underway at Diamond Harbour Women's University. Debangshu Panda of the BJP was leading by 44,891 votes when reports last came in. Shambhunath Kurmi of the Communist Party of India Marxists was running in second position. Abdul Razak Molla of the Indian National Congress in third, and Jahangir Khan of All India Trinamool Congress was in fourth position. The counting has been conducted across 14 tables and will span a total of 21 rounds for the Faulta constituency. The government has advised all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan until further notice, in view of the evolving Ebola outbreak situation. It also directed Indian citizens currently residing in or travelling to these countries to strictly follow public health guidance issued by local authorities and maintain heightened precautions. Ministry of Health and Family Welfare informed that India has not reported any case of Ebola disease. At least 24 people were killed and several injured after a powerful explosion ripped through a railway line in Pakistan's Balochistan province today. The explosion occurred near the Chaman Fatak railway station in capital city Quetta. A train suffered a partial damage in the blast, while 10 vehicles parked in the area were also damaged. Following the incident, an emergency was declared in government hospitals across Quetta. Chinese Ambassador to India Xu Feihong today expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for sending a condolence message following the mining incident in Shanxi province of China. The incident has so far claimed 82 lives, while 9 people are still missing. The Department of Consumer Affairs has expanded the role of government-approved test centres, or GATCs, to strengthen the system for checking weights and measures in the country. For this, the government has amended the Legal Metrology Rules 2013. The 6th day 79 World Health Assembly concluded in Geneva yesterday, during which member states adopted multiple resolutions to advance multilateral cooperation in safeguarding human health. The assembly adopted more than 20 decisions and 13 resolutions on issues including stroke, tuberculosis, antimicrobial resistance, emergency care, hemophilia, precision medicine, and radiation. In IPL cricket, the Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals in Mumbai at 3:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
5: निकल लेता है जहां दिल को सुकून मिलता है, और ऐसा ही सफर आज कुछ हम तय कर रहे हैं।

श्रोताओ, साइकिल की यादें तो आपको बतानी ही हैं, साथ साथ आप ये भी बताइए कि ये जो गीत है वो एक टेंट के पास फिल्माया गया है, ऐसी कोई याद आपकी है क्या? क्योंकि टेंट में भी आपने कभी ना कभी रात या दिन जरूर बिताए होंगे।

ये जो आखिर में आप सुन रहे थे संगीत, ये पंछी की उड़ान यानी उसके पंख की आवाज़ थी श्रोताओं। और ऐसा शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो कि आपने भी टेंट में रात बिताई हो या दिन बिताया हो या कहीं गए हो, खासकर अगर आपने पहाड़ों की सैर की है तो आप हमें ऐसे अनुभव बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि खुशनुमा मौसम मन को सुकून देता है, हल्की ठंडी हवा, खिलते फूल और बादलों की छांव दिल को नई उमंग से भर देती है। ऐसे मौसम में पुरानी यादें और दिल में बसी कोई खास तस्वीर बार बार मुस्कुरा उठती है। दिल में बसी तस्वीर केवल किसी चेहरे की नहीं होती बल्कि उन प्यारे लम्हों की भी होती है जो जिंदगी को खास बना देते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप इंसान को जीवन की भाग दौड़ से कुछ पल राहत के देता है और मन को शांति का एहसास कराता है, और खुशगवार मौसम उन यादों को और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, और तभी तो हम ऐसे मौसम में खास प्रकृति की ओर चल देते हैं, और तब हम ये नहीं देखते कि मौसम कौन सा है, क्योंकि हमारे दिल का मौसम जो कह रहा होता है कि भाई अब चलिए कहीं और चलें। एक हमारी और श्रोता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास एक साइकिल थी, उसे साइकिल पर बैठकर हमारे पापा सभी को स्कूल छोड़ देते थे। मुझे और मेरे दो भाइयों को मेरे पापा साइकिल पर ले जाया करते थे, और पूरी फैमिली पांच जने साइकिल पर ही जाया करते थे, कहीं भी जाते थे। और फिर जब मैं 12वीं कक्षा में आई तब मुझे स्कूल की साइकिल मिली थी, तब मैं साइकिल चलाया इन्होंने और इन्हें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पैर पैदल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जाने का जरिया मात्र नहीं बल्कि ये अपने आप में एक एहसास है। बचपन की पहली आज़ादी के एहसास से लेकर आधुनिक दौर में पर्यावरण को बचाने के आंदोलन तक साइकिल हमेशा से इंसानी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा रही है। एक और श्रोता लिखती हैं, सुंदरता आईने में नहीं इंसान के स्वभाव में दिखाई देती है। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर दिल खूबसूरत ना हो तो सुंदरता अधूरी लगती है। असल खूबसूरती मुस्कान, सच्चाई और अच्छे व्यवहार में छुपी होती है जो दूसरों के दिलों में जगह बना लेती है, वही सच में सबसे सुंदर होता है। सुंदरता रंग या चेहरे से नहीं, इंसान की सोच और उसकी सादगी से पहचानी जाती है। और कुछ लोग साधारण दिखकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं क्योंकि उनकी रूह बहुत सुंदर होती है। जी हाँ, जब रूह सुंदर होती है तो ज़्यादातर देखने में ऐसा आता है कि मौसम चाहे जो भी हो, लोग चाहे जैसे भी मिले, बातें चाहे कोई भी कहीं जाए, लेकिन सुंदर लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है, और यही है दिल का मौसम। एक और श्रोता लिखते हैं, वाकई में दिल का मौसम खुशगवार हुआ था जब मैं स्वयं परिवार सहित जून 2024 में कश्मीर गया था। मौसम तो आशिकाना था ही, और धर्मपत्नी की बिंदिया जब चमकती थी और मेरे दिल की आवाज़ भी लहरा कर कहने लगती, हर पल मजबूर था कि कश्मीर कुदरत का नायाब करिश्मा है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो।

इस गीत के संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और पाकीज़ा फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, उस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से पुराने सदाबहार गीतों की पंक्तियों उनके भावों और उनके मुखड़ों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बाग बाग हो गया। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर गोल्डन एरा का एक म्यूजिकल सफरनामा। आपके इस खूबसूरत पैराग्राफ को खंगालने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाबहार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं, और बहुत सारे गीतों की बात इन्होंने लिखी है, उसमें से बहुत सारे गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। जी हाँ, इनमें ये गीत भी है, मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल से गिरा, चोट खाई, पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर ने ले ली है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारी श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली जब कक्षा 8वीं में था, वो भी सेकंड हैंड 75 रुपये में ख़रीदी गई थी। जी हाँ श्रोताओं, और आगे लिखते हैं कि उस समय लगा जैसे मुझे हवाई जहाज़ मिल गया हो, इधर उधर बहुत चक्कर लगाया करता था। नई चीज़ें जब आती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, और ख़ासकर जो साइकिल थी उसका क्रेज़ तो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी, यानी पहले गीत की इन्होंने बात करी है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं, और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत ज़्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। जी हाँ, जहाँ तक कीमत की बात है, वो प्रकृति से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। साइकिल पर सवारी प्रकृति को पूरी तरह से महफूज रखती है, तो अक्सर जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतम से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, जहां प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चलना, बादलों का अदखेलियां करना, एक संगीतमय मादकता वातावरण में घुली सी जाती है। प्रिय का स्वप्न में आना प्रेमियों के मन में विरह की पीड़ा को मिटाकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति से भर देता है। एक और श्रोता लिखते हैं, कुछ गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल को सुकून की बारिश मिल गई हो, कुछ गाने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी शांति छोड़ देते हैं, कुछ धुनें सुनते ही पुरानी यादें धीरे से सामने आ बैठती हैं, ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो, कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है, जैसे नीले गगन के तले जिस पथ पर चला छोड़ दे सारी दुनिया, और ये सारे गीत इन्होंने लिखे हैं, जो गीत इन्होंने अंदाज लगाए। वैसे हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो ज़बरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत जो हैं आज के कार्यक्रम से मिलते हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का ये गीत। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लिखना बाकी है कि हमने पूछा था इस जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी है। कुछ एक श्रोताओं ने प्रेम कहानी के बारे में लिखा है, देखते हैं क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कल से एक लंबी यात्रा पर हूँ, गाड़ी की चाल तो सीधी रखे हूँ पर दिल लहरा के ही चल रहा है। कुदरत के हसीन नज़ारों को देखकर दिल का मौसम भी आशिकाना सा हो गया है। हम सब की तरह कुदरत भी सबसे बोलती है कि हमें तुमसे प्यार है, मगर उसकी ये आवाज़ कानों में भले सुनाई नहीं देती तो उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने पर ही समझा जा सकता है। और ये उसी को महसूस हो सकती है जो प्रकृति को प्यार करे। जी हाँ, तो आप बताइए कि प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं। क्या आपने पेड़ लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वो कितना बड़ा हुआ है हमें बताइए, और किस चीज़ का पेड़ है। एक इन्होंने ही जिनका अभी मैंने जिनकी बात पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे गीतों की बात करी है। पहले मिले थे सपनों में, दिल लहरा के चल, बिंदिया चमकेगी, जो बात तुझ में है, देखते हैं कौन सा गीत आता है। तो एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, लेकिन दिल का सफ़र तो सभी जान लेते हैं, सभी समझ लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैडम जी, आज के सुरीले सफ़र में सभी फेसबुक साथियों के साथ पुष्पमाला पहनकर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। 10 बजे के तापमान 31 डिग्री पर अपने

स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात होकर शाम अवकाश होने तक अपना कार्य पूर्ण कर सकुशल अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं। और शुभकामनाएं लिखी हैं इन्होंने। एक और श्रोता लिखती हैं कि दो दिन से सच में दिल का मौसम खुशगवार बना हुआ है, हालांकि गर्मी का कहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है और दिल कहल उठता है, मौसम है आशिकाना। भाई, हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की तरफ से एनसीसी कैंप राजगीर में लगा था। उस दौरान एक रात टेंट में गुजारनी पड़ी थी। बहुत मज़ा आया था। जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार घर से बाहर एक टेंट में रात गुजारी, वो दिन आज भी बहुत याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार किया है तुम बताना। और इन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। और वैसे आप कोशिश करिए, कोई ना कोई गीत तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कोई गीत नहीं मिलता। अपनी कोई यादगार तस्वीर आप बता सकते हैं।

रोशन की तर्ज थी फिल्म ताजमहल का ये गीत आप सुन रहे थे। प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया, साहिल ध्यानवी की रचना थी। हमारी श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर कभी पुरानी नहीं होती, जब देखो उतनी ही नई नकोर लगती है, मगर तस्वीर में वो बात कहाँ जो तुम में है। ये सारी प्रकृति को देखो तो जीने की तमन्ना बरबस सिर उठाने लगती है। काश ये पेड़ पौधे भी बोलते, हमसे कुछ कहते, हम सब नहीं जानते कुदरत अपने कितने अंदर कितने राज समेटे हैं। आप चाहे जितना सोच लीजिए इस जीवन के बारे में, मगर बिना प्रकृति से जुड़े कुछ भी संपूर्ण नहीं है। ये बादल, ये दीवानापन, ये बेकरारी और कुछ अंतहीन सपनों के साथ आज चलते हैं एक और सुरीले सफर पर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी सुगम और सुंदर लिखावट देखकर मौसम के साथ दिल भी आशिकाना बन गया है। कुदरत का प्यार, जन्नत की तस्वीर जीने की तमन्ना बढ़ा रही है। यही आस नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर सचमुच का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, ये मौसम रंगीन समा, और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, बिंदिया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तो दिल का मौसम खुशगवार हो जाएगा, दिल भी झूम उठेगा और कहेगा लहरा कर चल दिल्ली में, क्योंकि गाना ही दिल्ली में फिल्माया गया है। खैर, पैराग्राफ को पढ़कर ही पैर थिरकने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं और दिल का मौसम जैसे गीत आज की इबारत में शामिल हो सकते हैं। जी, अभी चलने का समय नहीं हुआ है श्रोताओं, तो आप चलिए नहीं बल्कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, आपको इस गीत के बाद बताते हैं।

हमारे घर में हमने गमलों में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उस मन भावन को भी अपने जो है घर का फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का तो मौसम है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत सुंदर है, खूबसूरत गानों की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रहे हैं पर मैं लिख नहीं रही हूँ, सुनने का ही मजा लूंगी। ऐसा मत कीजिए, आप लिखिए भी जरूर। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और निकलने वाला हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो, सपनों में मिलेंगे, तस्वीरों से बात करेंगे तो आशिकाना दिल लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज रूपी बिंदिया चमकती है, कायनात के इस रूप को देख जीने की तमन्ना उठती है, राज़े दिल छुपाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होके दीवाना होकर बरसेगा। और बहुत लंबी इबारत है।

सुरीला सफर कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। कुदरत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है, गर्मी भी है और धूप भी और मंद मंद हवा के झोंके भी आ रहे हैं, क्या पता शाम तक बारिश भी हो जाए। कुल मिलाकर सफर गीतों के साथ जिंदगी का भी सुहावना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कोरोना काल में ली गई साइकिल जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई। सुबह शाम एक दो घंटे जब तक साइकिल न चलाऊं चैन ही नहीं आता। सेवानिवृत्ति के बाद टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। जी हाँ, टाइम पास की जहाँ तक बात है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इससे जो एक एक्सरसाइज होती है वो बड़ी अच्छी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वैसे अभी मौसम तो खुशगवार नहीं है, लेकिन दिल का मौसम तो हमारे हाथ में है। सुरीला सफर में गाने सुनकर मौसम खुशनुमा हो जाएगा। आज ऐसे भारत में बहुत से गाने नजर आ रहे हैं और कुछ गीतों को भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं, साइकिल चलाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी साइकिल से बाजार घूमने जाता हूँ, घुटनों का व्यायाम हो जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, पाकीज़ा फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थी वो मीना कुमारी नहीं रही। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने बहुत साइकिल दौड़ाई है दिल्ली में, पूरा रिंग रोड नाप दिया जो पूरे दिल्ली के क्षेत्र को जोड़ता है।

श्रोताओं, आप फिल्म पहचानें और संगीतकार बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है। सूरज और चंदा फिल्म का गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और रीटा अक्सर और संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था।

आपको भी कभी ऐसी मशक्कत करनी पड़ी श्रोताओं क्या, किसी ख़ास जगह को ढूंढने में, किसी जगह पर जब आप पहली बार गए? एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऊँट की सवारी तो प्रायः सभी समुद्री तट पर उपलब्ध है और पूरी मेरे घर से 80 किलोमीटर दूरी पर है, बच्चे भी तो ऊँट की सवारी किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिल्कुल आपने जैसा पूछा, मौसम तो होते ही हैं प्यारे, हर मौसम की अपनी अलग विशेषता है और पकवान भी। सर्दियों की प्रतीक्षा रहती है हमें, क्योंकि हमारे लखनऊ में निमिष सर्दियों में ही तो मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं, राजस्थान में ऊँट की सवारी यहाँ के पर्यटन का एक मुख्य और बेहद खूबसूरत आकर्षण है। थार मरुस्थल के सुनहरे रेतीले टीलों के बीच ऊँट पर बैठकर सूर्यास्त या सूर्योदय देखना एक जीवन भर न भूलने वाला अनुभव होता है। ऊँट पर बैठते और उतरते समय थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि जब ऊँट अपने पैरों पर खड़ा होता है या बैठता है तो आगे और पीछे की तरफ एक जोरदार झटका लगता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मौसम किसे प्यारे नहीं लगते, हमें तो नवंबर और फरवरी के महीने का मौसम बड़ा प्यारा लगता है, जब सर्दी थोड़ी सी कम रहती है। ऐसे मौसम में हाथ डाले दूर तक चलने में आनंद आता है, जब चांदनी रात हो।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, राजस्थान तो नहीं गई लेकिन अभी हाल में गुजरात के दीव में हमने ऊंट की सवारी की, थोड़ा डर भी लगा जब वो खड़ा होता और फिर बैठता है। एक और श्रोता लिखते हैं, फिल्म गाइड का गीत मेरी लिस्ट का पांचवा गीत है। एक लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ फिल्म में किले में फिल्माया गया ये गीत है। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम के काम आता था और हम उस पर बैठकर घर से खेतों में और वहां से फिर घर आते थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि हाँ, मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर में हुआ था गाइड फिल्म का फिल्मांकन गीत का।

मिलो सजना इस फिल्म का गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: मित्रों, हम सभी अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हमें डर नहीं लगता, जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां कोई जोखिम नहीं होता। उसी जगह को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां आराम शुरू होता है, वहां तरक्की रुक जाती है। जरा सोचिए, अगर एक छात्र सिर्फ वही पढ़े जो उसे आसान लगता है, तो वो कभी नई चीजें नहीं सीख पाएगा। अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ आसान अभ्यास करे, तो वो कभी महान खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान हमेशा डर के कारण नए अवसर छोड़ता रहे, तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। याद रहे, सफलता, आत्मविश्वास और बड़े सपने हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं।
1: सुनो तो जरा, हमको है ये कहना,

अगर जिंदगी में हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर और आराम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। बेशक कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ कभी ग्रोथ नहीं होती। तमाम उदाहरण हैं सफल लोगों के, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही सफलता हासिल की है, अपनी काबिलियत से देश दुनिया में इतिहास रचा है, संघर्ष किया है। अगर ये लोग डर जाते, मेहनत से बचते या आराम चुनते, तो शायद आज पूरी दुनिया इन्हें नहीं जानती। सच तो ये है कि डर हमेशा कंफर्ट जोन के दरवाजे पर खड़ा रहता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम असफल हो गए तो, अगर हमसे गलती हो गई तो। लेकिन हमें याद रखना होगा, गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। असफलता बुरी नहीं होती, कोशिश छोड़ देना बुरा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें गिरना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और खुद को बदलना भी पड़ेगा। अगर उड़ना है ऊंचा, तो घोंसले की आरामदायक दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी।

मित्रों, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा डर के दूसरी तरफ मिलती हैं। कहते हैं आराम इंसान को कमजोर बना देता है और संघर्ष इंसान को महान बनाता है। सफलता कभी भी आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो रातों को जागते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर उठकर लड़ते हैं। हमें खुद को पहचानना होगा और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना होगा, क्योंकि जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है दुनिया पर वही राज करता है। अगर तूफानों से लड़ने का जुनून हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। साथियों, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम खुद को चुनौती देते हैं। एक बीज अगर मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहना चाहे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ बनने के लिए उसे मिट्टी फोड़नी पड़ती है, अंधेरे से बाहर आना पड़ता है, बारिश और धूप सहनी पड़ती है। उसी तरह इंसान को भी संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। तो आप भी बड़े सपने देखिए, खूब मेहनत कीजिए, हिम्मत के साथ डर का सामना कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाइए।

साथियों, जिंदगी आसान रास्तों से नहीं, चुनौतियों से महान बनती है। इसी के साथ संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
4: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
3: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
4: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
5: These would be the principles with which we would approach that region.
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
6: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
3: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @iirnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानशी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
7: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत था। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आप सुन रहे थे दो चोर फिल्म का गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को शुरू में ढाला चित्रगुप्त ने। लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: तुम इसको खेल समझे हो मगर एक दिन दिखा देंगे।

0: मोहब्बत इसको कहते हैं इस फिल्म का गीत था, मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिल

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। शिमला में कल देर शाम एक समारोह में उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर है और इस यात्रा में मीडिया, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों सहित युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा कि छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा में बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है। प्रचार अभियान थमने के बाद अब उम्मीदवार सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी केवल घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान चला सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 28 मई जबकि तीसरे चरण के लिए 30 मई को वोट डाले जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। राज्य के अन्य जिलों की तरह बिलासपुर में भी पंचायत चुनाव के दौरान मतदान से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक तौर पर प्रचार गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुल्लू जिले में पंचायत चुनावों के लिए 84 पोलिंग पार्टियां जिला मुख्यालय से रवाना कर दी गई हैं। जिले में चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए 400 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निर्वाचन अधिकारी व कुल्लू के एसडीएम निशांत कुमार ने बताया कि प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं के समुचित प्रबंध किए गए हैं ताकि मतदाताओं को असुविधा न हो। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने आज धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा दी थी लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बिजली पर सबसे पहला हक प्रदेश की जनता का है लेकिन आर्थिक तंगी का हवाला देकर सरकार लोगों का हक छीन रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर को लेकर भी जनता में भय का माहौल बनाया गया है।
1: आप आर्थिक स्थिति की आड़ में हिमाचल प्रदेश के नागरिक का हक उससे नहीं छीन सकते, जनता का हक उससे नहीं छीन सकते। इस सारे मुद्दे को लेकर के मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक आपका वायदा था, वो पूरा नहीं है। स्मार्ट मीटर के नाम के ऊपर आप जनता को धमकाते हो। ये सारे मुद्दों को लेकर के अगर आपने इसी तरह से जारी रखा तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आंदोलन इस प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए करेगी।
0: लाहौल स्पीति जिले में पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा के 71 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार इस्तीफे का मुख्य कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी सहित जिला भाजपा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को माना जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले लाहौल स्पीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है जबकि अन्य दलों से आए लोगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस सामूहिक इस्तीफे के बाद लाहौल स्पीति की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि इसका असर पंचायत चुनावों के साथ आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले पर पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: पंचायत चुनाव के चलते सिरमौर जिले में राज्य पथ परिवहन निगम की करीब 60 बसें चुनाव ड्यूटी में रहेंगी। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक रामदयाल ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद निगम ने इन बसों को चुनाव पार्टियों को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए तैनात किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:00 PM। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है भारत का बदलता मेट्रोलॉजी इकोसिस्टम। वाचक स्वर पूनम शर्मा।
0: भारत का बदलता माप विज्ञान इकोसिस्टम, निष्पक्ष व्यापार, उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत कर रहा है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 ने एक आधुनिक नियामक ढांचे की नींव रखी है जो प्राचीन तौल और माप प्रणाली से विकसित हुआ है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरी जैसी संस्थाएं राष्ट्रीय मापन मानकों और सत्यापन प्रणालियों का समर्थन करती हैं। ये पहल वैश्विक मापन और गुणवत्ता अवसंरचना के साथ भारत के समन्वय के माध्यम से व्यापार में सुगमता को भी बढ़ावा दे रही हैं। मापन आधुनिक आर्थिक प्रणाली, औद्योगिक उत्पादन, वैज्ञानिक प्रगति और उपभोक्ता संरक्षण की नींव है। मानकीकृत मापन व्यापार, स्वास्थ्य अवसंरचना, दूरसंचार, ऊर्जा वितरण और डिजिटल तकनीकों जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करते हैं। प्राचीन तौल और माप प्रणाली से लेकर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के प्रवर्तन तक भारत का मापन इकोसिस्टम निरंतर विकसित हो रहा है। ये विकसित होता ढांचा बदलती व्यापार प्रथाओं, उभरती तकनीकों और बढ़ती उपभोक्ता सुरक्षा आवश्यकताओं का समाधान करने का प्रयास करता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो हर साल 20 मई को मनाया जाता है, आधुनिक समाज में मापन विज्ञान के महत्व को उजागर करता है। ये दिन इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजर्स द्वारा 1999 में स्थापित किया गया था। ये 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस कन्वेंशन ने वैश्विक रूप से एक समान और निरंतर विकसित होती मैट्रिक माप प्रणाली के लिए संस्थागत और वैज्ञानिक आधार सुनिश्चित किया। इस वर्ष की थीम मेट्रोलॉजी नीति निर्धारण में विश्वास का निर्माण, मेट्रोलॉजी की साक्ष्य आधारित और पारदर्शी शासन में भूमिका पर जोर देती है। मेट्रोलॉजी सामान्य लेनदेन और सार्वजनिक सेवाओं में सटीकता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करके दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। लीगल मेट्रोलॉजी प्रणालियां विभिन्न प्रकार के तौल और माप यंत्रों को नियंत्रित करती है। इनमें पेट्रोल पंप के यंत्र, किराना दुकानों के तराजू, आभूषण की दुकानें, अस्पतालों में उपयोग होने वाले यंत्र, बिजली मीटर, जलापूर्ति प्रणाली और पैकेज्ड वस्तुएं शामिल हैं। ये सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं को उनकी खरीद और सेवाओं के लिए सही मात्रा और मूल्य मिले। ये प्रणालियां कम मात्रा देने, गलत बिलिंग और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को रोकने में मदद करती हैं और इस तरह दैनिक वाणिज्यिक लेनदेन में उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करती हैं। सटीक मापन प्रणालियां सार्वजनिक कल्याण और सुरक्षा में भी योगदान देती हैं। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की स्थापना के साथ भारत की आधुनिक मेट्रोलॉजी यात्रा आकार लेने लगी। इसके बाद 1956 में स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट पारित किया गया जिसने पूरे देश में एक रूपता स्थापित की। वैश्विक स्तर पर मापन के लिए स्वीकार्य मानक इकाइयां हैं। इन इकाइयों को ऐसे स्थिर वैज्ञानिक नियंताओं के आधार पर परिभाषित किया गया है जो कभी नहीं बदलते। इससे सुनिश्चित होता है कि मापन दुनिया भर में सटीक, एक समान और विश्वसनीय रहें। मीटर, किलोग्राम और सेकंड जैसी इकाइयां प्रणाली का हिस्सा हैं। ये प्रणाली विज्ञान, व्यापार, उद्योग और दैनिक जीवन में संगति बनाए रखने में मदद करती है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी भारत का नेशनल मेजरमेंट इंस्टीट्यूट बनकर उभरी और मीटर व किलोग्राम के राष्ट्रीय प्रोटोटाइप की रख रखाव करने वाली संस्था बनी। रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज राज्यों में मानकीकरण और सत्यापन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए स्थापित की गई। ये लेबोरेटरी प्रयोगशालाओं और वाणिज्यिक व्यापार गतिविधियों में प्रयुक्त मानकों की तुलना और सत्यापन करती हैं। ईंधन वितरण यंत्र, पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने वाली मशीनों का नियमित सत्यापन और कैलिब्रेशन किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ताओं को मशीन पर दिखाए गए ठीक ठीक मात्रा के ईंधन ही मिल रहे हैं। जल और बिजली मीटरों को खपत को सटीक रूप से रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि बिलिंग में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
3: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की ज़िला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खय्याम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिन जी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतु रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाहा गुरई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाया शोर इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से, और भरत यादव, काजल शर्मा, विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आड़िया, भारती, पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आड़िया।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी, और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, और इसी गीत की फरमाइश की लीला बेन, स्मिता बेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: बाहर जल्दी कीजिए, हमें भी बाहर जाना है।
1: मेरी भी कॉल लगने वाली है।
2: हाय फ्रेंड्स, क्या चल रहा है?
1: फिलहाल तो चाय और समोसे चल रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो मैं बाहर आ गई।
2: चल चलो सुमित, उधर बैठते हैं खिड़की के पास।
3: वहाँ क्यों?
2: अरे भाई, आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए। तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी।
4: हाँ बिटिया,
2: हमारी चाय यही दे देंगे ना?
4: लाई चाय बिटिया।
2: चल बैठ सुमित।
3: अरे यार, तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
2: तो ले चाय पी, एकदम गरम है। अरे सुमी, जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
3: कहा, कहा? ओ, जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
2: वो दिन वो
3: कहां?
2: तूने शायद शैम्पू किया है। वाह, कितने खूबसूरत बाल हैं।
3: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
2: सुमन, सुमी वो देख सुमन देखो।
3: कहाँ?
2: अरे कितनी अच्छी लग रही हैं।
5: सच में
2: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
3: अरे यार, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी धीरे धीरे तैरती हुई चली जा रही है।
2: पर तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है, न कोई एक्साइटमेंट
3: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप। गोरी गोरी दुबली पतली एक प्यारी सी बालिका, जैसे
2: कटनार की गली, यही कहेगी ना। ले समोसा खा। हाँ तो फ्रेंड्स,
1: यस
2: मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है। ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है। बस ये भी चंदन जैसी है। पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
3: रीमा तू नहीं सुन रही।
2: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना।
6: Three cheers for भावी कवित्री।
2: तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
3: अरे यार समोसा खाने दो।
2: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
3: और रीमा, अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आंखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन हे वृक्ष चंदन।
2: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी सुमी?
3: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
2: ओके बाय बाय फ्रेंड
6: बाय।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई।
0: कबूतरी? What do you mean? You mean सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकुती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा बाय द वे, आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे, अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अधखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया, आप घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी है, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
3: तार वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊँगा।
3: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूँगी? साफ बताओ ना भैया क्या बात है।
4: तो सच कह दूँ? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
3: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
3: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
4: ये मजाक नहीं सुमी, सच है, घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
3: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
4: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखिर का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
3: ओ भैया,
4: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
3: हाँ तभी तो आप भुगत रहे हैं, रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
4: सुमी बस प्लीज, दुख तिरक मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना?
3: सामान बांध लो, सब लाड साहब हैं, मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब बीए भी नहीं कर पाऊंगी, लड़का इंजीनियर है। अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को, पहले से आ जाना नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
2: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: अरे सुमी सुमी, देख तेरे बारात आ गई। सुमी मैं भी तेरा दूल्हा देखा।
1: नहीं देना, मुझे छोड़कर मत जा।
0: क्यों?
1: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे घबराहट कैसा, सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
1: छोड़ मुझे रीमा, शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रीमा?
0: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा, अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
1: ठीक है,

0: मैं भी चलू?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों, शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ,
0: हाँ अंकल,
1: कि शोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती।
1: हाँ।
0: सुमी खुश रहे बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।
1: हाँ।

0: भाभी घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे सुनो सुनो नानी सुनो अरे ताई आंटी दीजिए ना जोड़ी की आंटी तारे जोड़ी है।
0: आइए भाभी अब उधर बैठते हैं। आइए भैया
2: तुम भी चलो।
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
4: अरे भैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा,
2: किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
4: अच्छी हो जी
0: चाय पी लीजिए भैया। आप लोग भी चाय पीजिए।
1: क्या कहा, मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
0: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही

0: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई? हे भगवान, अब बहू का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा चांसी बहू आते ही ग्रहण लग गया, अब क्या होगा?
1: अरे बंधी भी तो पागल के साथ
2: क्या कहा? अरे मैं पागल हूँ? तुम पागल हो, यही पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मनुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। अरे ये मुझे क्या पहना दिया? हार, अंगूठी, ये लो, लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो, नाचो, गाओ।
0: भैया, भैया, ये क्या कर रहे हो भैया? भाभी, बुआ, पकड़िए इन्हें, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
2: छोड़ दो मुझे छोड़ दो। देखो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो।
3: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं।
0: बाबूजी,
4: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
0: भैया को फिर दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रही हैं।
4: क्या कह रही?
0: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, चाची बुआ साबुनी पकड़े हुए हैं।
4: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर क्या तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर, तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
0: अच्छा।
4: भाभी, राहुल, विकी, तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो। मंजू, तुम बेटे बहू को संभालना।
0: अच्छा बाबूजी।
4: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
0: ठीक है बाबूजी। भाभी, ताई जी संभालिए भैया को। भाभी, ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। भाभी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए।
5: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी, क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूं, या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं? सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
0: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
5: तो फिर?
0: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे, इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
5: ट्रेजेडी?
0: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गए, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
5: वहाँ ठीक रहते हैं?
0: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
5: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
0: उम्मीद दिलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा, अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
5: नहीं मंजू जी, अभी भूख नहीं।
0: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबू जी आ गए हैं।
5: कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति।

0: इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देते। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी डैडी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
1: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भोला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंभला गया है। किस सम्मोहन में बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान, भैया ठीक हो गए हूँ। बाबूजी, क्या हाल है भैया का?
2: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
1: हैं?
2: हाँ, अगर सावधानी ना बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
1: बाबूजी।
2: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
0: पाप क्या होगा बाबूजी?
2: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
3: जी बाबूजी।
2: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
1: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी, भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
2: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
1: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकते हैं और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
2: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
1: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
2: मंजू, मंजू,
1: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो।
2: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप में आता है पढ़ देती है।
1: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
2: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूँ उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
1: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
2: ठीक।
4: अरे आ गए आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
5: मम्मी प्लीज, के सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगे। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
4: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तो? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
5: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
4: क्या हो गया मेरी सुनी बेटी?
6: हाँ
5: आए डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
4: हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है।
3: इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई, इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ, मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा। चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
4: ठीक है ठीक है,
3: और घबराने की कोई बात नहीं है।
4: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
5: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे। हाँ
4: ठीक है,
5: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
4: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
5: मम्मी, हमें धोखा दिया गया है।
4: धोखा? कैसा धोखा?
5: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते हैं।
4: है?
5: कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा। वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
4: अच्छा,
5: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
4: नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, इससे क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सोमी, ये क्या?
5: देखिए मम्मी, इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
4: क्या?
5: इस सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है मम्मा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। मम्मी, एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
4: अच्छा,
5: अब ठीक है मम्मा, आप सुमी के पास जाइए।
4: ठीक है।
0: वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी, और मैंने उन्हें बदले में क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे हर वक्त समझाते रहते हैं, पर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
6: अंदर आ सकता हूं?
0: ओ, आप आइए आइए, बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
6: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुमी?
0: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
6: यहाँ रहकर भी क्या करूंगा सुमी, एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी, आज आखिरी बार कह रहा हूं।
0: कैसे तोड़ दूं? ये दुनिया, ये समाज मुझे जीने देगा?
6: समाज, समाज, फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन, तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
0: राजन!
6: सुमी
0: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं
6: सुमी।
0: और अब चिंता
6: ओ सुमी, मैं जीत गया सुमी, मैं जीत गया। शायद चंदन व्रत से सांप हट गए हैं
0: और बिखर गई है माधक कंद।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।
2: जहां पे सवेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993 फिल्म।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवां भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ हम थे
2: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T-157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
2: जी
1: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टेड बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है,
1: ना ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा था उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गया और मद्रास AVM में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृषि साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफ़ी
2: आगे चाहूँगा।
1: तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बीआर चोपड़ा सर ने कहा हाँ हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रख लो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बीआर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
2: जी।
1: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
2: Yes.
1: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला, 1 आने का टिकट, वहां जाता 5 आने की पिक्चर, 1 आने का खाना और 1 आना वापस आना, ठन्नी में पिक्चर
2: काम बन जाता था।
1: काम बन जाता।
2: कौन कौन सी फिल्में देखी होंगी?
1: सब, कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती पांच बार से कर कोने में बैठा सब आगे चले। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
3: जावेद साहब ने,
1: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
3: हाँ
1: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
3: हाँ बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
3: वो भी आपके दोस्त।
1: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी।
3: जी जी।
1: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
3: हाँ
1: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है, ये उनके जहन में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है ख़राब हो चुका था, ख़राब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
0: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
1: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
3: बाप रे,
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत ज़बरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
3: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
3: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
3: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी हिट हैं, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
3: बिल्कुल, और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
3: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई।

0: रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे। नया न्यू कमर था राइटर,
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर, स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर लें तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ।
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज़ के साथ किए हैं, जैसे शबाना आज़मी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक।
1: खूबसूरत
2: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे, तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश से कहो पूछ लो, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा, तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है प्ले था, बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर।
1: जी जी,
2: मैंने कहा ये जो इधर टेंट्रम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता।
1: जी जी जी,
2: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
1: जी,
2: नाटक में अमेरिका में बैठे हैं तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उन्होंने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर तेरा नाम मेरा नाम न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको सूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है, और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? मैंने जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहा हूँ, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लेती है, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज़ में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया, और उन्होंने मुझसे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे प्ले, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को भी बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती हैं, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटें कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रेसलिंग हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने कहा रमेश जी आप ही करिए।
0: अरे वाह।
1: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था। मुझे आप ही करिए, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे रिहर्सलें करनी शुरू हो गए और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
0: वाह वाह वाह।
1: उन्होंने कहा रोल मेन जिया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतज़ार होता है, क्योंकि वो जज थ्रू आउट प्ले में है। और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं 3-4, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर हम गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली। क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुँह मांगा दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको, जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैंने तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूँगा, जरूर करूँगा, कब करना चाहोगे, कौन सी है स्क्रिप्ट, सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना, और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना, इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर मैं बाद में सुनाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जय जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जय जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। वो मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था। और वो हमने प्ले खेला, शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोइट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर वो उनके राइटर्स उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उन्होंने फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने, ठीक है। शौकत भाभी ने अपना अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पर हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहें कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा, अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखें। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, आप अपने ढंग से, आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्टों फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए।
तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती हैं शबाना की और वो, तो आप किसी और बोलिए, तो आप कमलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट आए, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिल के, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी रात में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये टाइम यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिगमिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नज़दीक नज़दीक ही हैं, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिष्ट हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला, और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया, रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है, और मैं

0: वो काबली वाला अलग है। काबली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी, विमल राज की बेटी, वो आई, प्रक्षित थाने के संग आई थी। उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीज़ें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और प्रक्षित सानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सानी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करने, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार करता।
1: मैंने देखा है, क्यूट प्ले है वो।
0: हाँ बहुत अच्छा है तो, लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्सल स्टेज पे क्या हो सकता है उस तरह करके जमा लिया अपना और चलता है। लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार दाहिदा हिना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबलीवाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा।

0: बताऊं। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबली वाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबली वाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सिद्दीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो दिन बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है और ये उसके सारे बीज जो है काबली वाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबली वाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहाँ गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूँ। तो वो पोर्शन हमने काबली वाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियाँ आपने सुनाई अपनी ज़िंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

बदल

0: नहलाऊं।
1: थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवा भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: तारा में आज
3: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 5 बजने को है थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापार समझौता वार्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में इसके विस्तार का स्वागत किया और कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा आपूर्ति विविधता महत्वपूर्ण है। ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के हित ये सुनिश्चित करने में है कि वैश्विक ऊर्जा मूल्य निचले स्तर पर बने और व्यापार निर्बाध हो।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले बातचीत के शुरुआत में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी का उल्लेख किया। श्री रूबियो 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के मतों की गिनती के 20वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। मतगणना डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में चल रही है। भाजपा के देवांशु पांडा ताजा समाचार मिलने तक 1,04,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे स्थान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में शुल्क खाते में लौटा दी जाएगी। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला भजन आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में, फिल्म है मिट्टी में सोना।

अभी आप सुन रहे थे भजन। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच।

0: युवा साथियों गुड इवनिंग, नमस्कार। और युवा साथियों, आज आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम युवा मंच। और युवा मंच कार्यक्रम में आज रह गए करंट अफेयर्स अपडेट। और आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूनम,
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त संगीता।
0: और दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश और दुनिया की उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिसमें राजनीति, खेल, विज्ञान, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी ताज़ा खबरों पर हम डालेंगे एक खास नज़र। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपको सरल और रोचक अंदाज में हर महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाई जाए, ताकि आप रहें हर समय अपडेट।
1: जी हाँ दोस्तों, और साथ ही देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों पर भी नज़र डालेंगे, और साथ में आपके मूड को फ्रेश करने के लिए बेहतरीन गाने भी सुनेंगे।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम लेकर आ रहे हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें।

0: तो युवा साथियों, इस दिल को छू लेने वाले गीत के बाद बात करेंगे करंट अफेयर्स में। भारतीय नौसेना ने पहला स्वदेशी डिजाइन वाला माहे क्लास ASW SWC INS माहे मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया और इसका नाम मलाबार तट के ऐतिहासिक माहे शहर पर रखा गया है। और जहाज का क्रेस्ट क्लाइरी पट्टू की उर्मी तलवार और लहरों के साथ है, जबकि चीता इसकी तेजी और फोकस को भी दर्शाता है। ये 8 जहाजों की श्रृंखला में पहला है।
1: और दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त झाड़ी नुमा प्रजाति की, जिसका नाम है
0: यूफोर्बिया अनंतपुरमेनिसिस।
1: हाँ, ये है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की एक स्थानीय और अत्यंत दुर्लभ संकटग्रस्त झाड़ी नुमा प्रजाति। हाल ही में खोजी गई ये प्रजाति केवल एक ही स्थान पर 2.5 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में लगभग 80 पौधों की आबादी तक सीमित है। और ये झाड़ी नुमा एक पौधा है जो कि ग्रेनाइट चट्टानी इलाकों में उगता है।
0: और युवा साथियों, वैज्ञानिकों ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र में पौधों की 2 और नई प्रजातियों की भी खोज की है, जिसमें यूफोर्बिया कैलेमेंसिस एक छोटा वार्षिक शाकीय पौधा है, जिसकी खोज गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्य जीव अभयारण्य के चालामा वन में भी की गई थी। और यूफोर्बिया की दोनों प्रजातियों में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं
1: और इसका उपयोग आदिवासियों द्वारा घाव, त्वचा के रोग और पाचन संबंधी विकारों के उपचार में किया जाता है।
0: औषधीय गुण जो है वो भी बहुत सारे हैं और साथ में सेरोपीजिया एंड्रिका एक बौना कंद युक्त शाकीय पौधा है, जिसकी खोज अल्लूरी सीताराम राजू जिले के पदेरू वन प्रभाग में की गई है।
1: और ये पौधा मई और जून के बीच पहली वर्षा के बाद फूलता है और बाद में आलू जैसे खाने योग्य कंद उत्पन्न करता है, यानी खाने में ये आलू जैसा ही होता है और दिखने में भी ये आलू के जैसा ही होता है।
0: जी हाँ युवा साथियों, तो ये थी पौधों की 3 नई प्रजातियों के बारे में जानकारी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत

0: युवा साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ परियोजनाओं के बारे में। तो छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में सफल पायलट परियोजनाओं के बाद भारत सरकार असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में समर्थ पंचायत पोर्टल का विस्तार कर रही है।
1: और ये पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में स्थानीय शासन को सुदृढ़ करना और वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ये पहल लक्षित नीति निर्माण और बेहतर स्थानीय प्रशासन को समर्थन प्रदान करती है।
0: युवा दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, भारत ने गुजरात के गांधीनगर में 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की और 44 वर्षों में ये पहला अवसर है जब भारत इस प्रतियोगिता का आयोजित कर रहा है। ये टूर्नामेंट 11 मई से 17 मई 2026 तक आयोजित किया गया और इसमें 28 देशों के लगभग 180 एथलीट भाग ले रहे हैं। ये चैंपियनशिप राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफिकेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है और भारत, चीन और श्रीलंका की टीमें इसमें सबसे बड़ी हैं, जिनमें प्रत्येक में 16 भारोत्तोलक शामिल हैं।
2: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara with its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer. The horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric. Nexa.
1: अगली जानकारी के साथ फिर से हाजिर हैं हम दोनों ही। और पूनम, बताइए अगली जानकारी क्या है जो हम अपने युवा साथियों से साझा करने वाले हैं।
0: तो अगली जानकारी जो है वो स्पेस डिस्कवरीज के बारे में है। तो हम बात करेंगे कि मई 2026 में वैज्ञानिकों ने एक नए एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह की खोज की, जो स्कूल बस के आकार का था और पृथ्वी की कक्षा के बेहद करीब से गुजरा
1: और जिसकी चर्चा भी हम सभी देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे।
0: और नासा के साइकी अंतरिक्ष यान ने मई 2026 में मंगल ग्रह की सतह से महज 4,500 किलोमीटर दूर उड़कर एक सफल ग्रेविटी असिस्ट पैंतरा पूरा किया, ताकि वह धातु से भरपूर एक दुर्लभ क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड की ओर बढ़ सके।
1: जी हाँ, कितनी अच्छी जानकारी देखिए आज हम साझा कर रहे हैं अपने युवा साथियों के साथ। और अगली जानकारी
0: की अगर बात की जाए तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का स्माइल सैटेलाइट लॉन्च के अंतिम चरण में पहुंचा है और जो ये अध्ययन करेगा कि सौर हवाएं पृथ्वी के चुंबकीय कवच को कैसे प्रभावित करती हैं। और संगीता, तो अब जो है हमारे युवा साथी जो है बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं एक और प्यारे से गीत का, तो क्यों ना एक गीत सुनवाया जाए।
1: आनंद लेते हैं गीत का।

0: फिर से बहुत बहुत स्वागत है युवा साथियों आपका, और बहुत सारी जानकारियां हमने अलग अलग फील्ड से आपके साथ साझा की हैं। और एक जो फील्ड है जो कि हमें भी और हमारे सभी युवा साथियों को बहुत ही पसंद है, और वो है
1: खेल जगत।
0: हाँ, वो है खेल का, और खेल की भी बहुत सारी खबरें हम आपके साथ साझा करेंगे और लेकर भी आए हैं बहुत सारी खबरें।
1: जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं क्रिकेट अवार्ड्स के बारे में। और मार्च 2026 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यानी BCCI ने नई दिल्ली में वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें कुछ के नाम हम आपको बताते हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी शुभमन गिल, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना को भी इस अवार्ड के लिए चुना गया था।
0: और युवा साथियों, राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज को भारतीय क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया।
1: क्रिकेट के मैदान में इस समय कई बड़ी और दिलचस्प खबरें जो है वो सामने आ रही है, और मुख्य रूप से इस समय IPL 2026 अपने अंतिम और सबसे रोमांचक पड़ाव पर है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो क्रिकेट जगत की कुछ मुख्य सुर्खियां इस प्रकार से हैं।
0: IPL 2026 के लीग मैच अब खत्म होने वाले हैं, और गुजरात टाइटन्स GT ने चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK को 89 रनों से हराकर प्ले ऑफ में क्वालिफायर एक में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। और IPL 2026 के प्ले ऑफ मुकाबले 26 मई से धर्मशाला और पंजाब में शुरू होने जा रहे हैं, जबकि इसका फाइनल यानी महान मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: और अपने सभी श्रोताओं को और अपने युवा साथियों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि IPL मैच धर्मशाला में 26 मई 2026 को खेला जाएगा, और फाइनल मैच जो है वो 31 मई 2026 को अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो हमारे युवा साथी जो हैं वो इस मैच का आनंद लेना तो बिल्कुल ना भूलें,
0: और अपनी अपनी पसंदीदा टीम की जीत के लिए दुआएं करते रहें। और हम सबकी दुआएं तो आपके साथ ही हैं।
1: हाँ हाँ संगीता, और हम सबकी दुआएं भी सभी टीम्स के साथ हैं कि वो जीतें।

0: और आगे बढ़े और आगे बढ़ें और अपने देश का नाम जो है वो ज़रूर रोशन करें। और संगीता देखो, वक्त का पता ही नहीं चला, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हमारा सफ़र जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है।
1: उम्मीद करते हैं कि आपको आज के करंट अफेयर्स और गानों का ये फ्यूज़न पसंद आया होगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहिए, खुद को अनुशासित रखिए और हाँ, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे कुछ नई खबरों और नए सुरों के साथ।
0: तो चलते चलते आपके लिए छोड़ जाते हैं एक प्यारा सा गीत। युवा साथियों, सुनते रहिए FM धर्मशाला और यूं ही मुस्कुराते रहिए। तो अब अपने सभी दोस्तों को कहते हैं बाय बाय एंड टेक केयर।
1: चलते चलते आपको ये बता दें कि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित वरीले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। शाम 6:06 पर आनंद लीजिएगा गजलों का, और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मिंजरा। किसानवाणी कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:10 पर, और विषय रहेगा गर्मियों में पशुधन की देखभाल। रात्रि 8 बजे समय रहेगा कार्यक्रम सबरस का। 8:15 पर आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिमबीट्स रिले किया जाएगा, और 8:30 पर सुनिएगा देशगान। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें फिल्म निर्देशक अनुराग बसु द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्मों से गीत सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे रिले की जाएगी। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। ये था विवरण आज शाम प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों का। अब एक नज़र कल प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुप्रभात में विश्व फुटबॉल दिवस के साथ साथ राज बिहारी बोस की जयंती पर बात होगी। इसके साथ ही गंगा दशहरा की जानकारी भी दी जाएगी, और रमणीक स्थल करसोग के बारे में जानकारी भी साझा की जाएगी, और पर्यावरण में उपयोगी पक्षी नीलकंठ की जानकारी दी जाएगी। महिलाओं के कार्यक्रम घर परिवार में विश्व फुटबॉल दिवस के साथ खेलों का हमारे जीवन में महत्व विषय पर जानकारी साझा की जाएगी, और मसालों में लौंग के गुण और खान पान में शाही टुकड़ा बनाने की विधि की जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है। प्रचार अभियान थमने के बाद अब उम्मीदवार केवल घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान ही चला सकेंगे। पहले चरण के मतदान के लिए विभिन्न जिलों में पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद इन चुनावों को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 28 मई जबकि तीसरे चरण के लिए 30 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश भर में मतदान प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों से बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया है। इस बीच पहले चरण के मतदान के लिए चंबा जिले की 118, हमीरपुर जिले में 83, कुल्लू जिले में 84 जबकि लाहौल स्पीति जिले में 12 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पहले चरण में बिलासपुर जिले की 62 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। लाहौल स्पीति जिले में पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा के 71 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार इस्तीफे का मुख्य कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी सहित जिला भाजपा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को माना जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले लाहौल स्पीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, जबकि अन्य दलों से आए लोगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस सामूहिक इस्तीफे के बाद लाहौल स्पीति की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि इसका असर पंचायत चुनावों के साथ आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले पर पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर को एक बार फिर प्रतिष्ठित संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान उनकी अध्यक्षता वाली कोयला, स्टील व खान संसदीय स्थायी समिति के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। अनुराग ठाकुर को वर्ष 2019 में भी लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान के तहत आज बिलासपुर में विशेष शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 41 बेटियों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि अभियान के अगले चरण के तहत 31 मई को भी बिलासपुर जिले के 30 चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में शिविर लगाए जाएंगे ताकि छूटी हुई पात्र बालिकाओं को टीकाकरण का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ये टीकाकरण बेटियों को भविष्य में सर्विकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा नाहन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज विवेक कालिया ने बताया कि मानवता के कल्याण और जरूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से मिशन द्वारा समय समय पर इस तरह के रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं।
2: मिशन का संदेश है कि रक्त नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बहे, ये इंसान को एक जीवन दान दे, इंसान को एक सुरक्षा प्रदान करे। इसी मानवता के भाव को लेकर ये मिशन के अनुयायी यहाँ रक्तदान शिविर कर रहे हैं और बरसों बरस से ये रक्तदान शिविर करते आ रहे हैं। अभी तक कुल 7500 ब्लड डोनेशन के कैंप पूरे भारत वर्ष में लग चुके हैं और तकरीबन 15 लाख यूनिट से ऊपर का रक्तदान मिशन द्वारा किया जा चुका है, जो एक मानवता के लिए मिशन की तरफ से सराहनीय योगदान है।
0: भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षाएं 18 जून से 27 जून तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का आयोजन शिमला स्थित राजकीय महाविद्यालय संजौली में किया जाएगा। परीक्षा की संशोधित समय सारणी डॉ मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है गजलें। जब वो मेरे करीब रहते हैं हम बहुत ही खुश नसीब रहते हैं। दुनिया की हर खुशी मिल जाती है हमें जब हमारे दिल के वो अजीज रहते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हरिहरन की आवाज़ में गाई इस गज़ल के साथ।

श्रोता हरिहरन की आवाज़ में आपने ये गज़ल सुनी। बुझ गई तपते दिल और दिन की अगन, हवाओं में खुली फिर एक मीठी सी चुभन, मौसम ने बदला मिजाज कुछ इस कदर, और तुम याद आए बन के सांसों की धड़कन। तो कार्यक्रम में आगे आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी। छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

अभी आप सुन रही थी गजलें। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मिंजरा।

कार्यक्रम मिंजरां सुना करदे सारे ही साड़ियां पैना जो जेड़ी है सै मास्टरनी दी दो हाथ जोड़ी कन्ने नमस्कार कन्ने दिखा मेरी भैनो मैं तुहाड़े अपने दिले ते जेड़ा है सै स्वागत करदी है कन्ने अज दे इस मिंजरां कार्यक्रम जो लेने मैं जेड़ी है हाजिर होई हो कन्ने एक कार्यक्रम खास तौर ने साड़ियां प्यारियां भैनां ताई जेड़ा है सै तैयार कीता गया है कने जिन्हां दे प्यार मेहनत कने समर्पण दे बगैर घर कने समाज भी जेड़ा ऐसा अधूरा है कने अज हां एक ऐसे विषय पर गल करनी है जेड़ा साड़ियां जिंदगियां ने जुड़िया है असां गल करनी है जैविक खेती दे बारे च जैविक खेती दे बारे च गल करने ते पहले मैं तुहानूं जो दसना चाहूंगी कि जालू मैं करे ते ट्याले पर ओवा दी थी तां करे ते दिखा ट्याले तक जालू मैं आई ता पैदल चली के आई कने ट्याले तक जेड़ा ऐसा पुजना भी था टैमे दा क्योंकि अपनियां भैणां कन्ने गलबात भी करनी थी ता जालू मैं करे ते चली ता सब ते पहले क्या कीता कि आज ता थी स्कूले छुट्टी ता मैं करे जेड़ी ऐसा लस्सी भी बनाई थी कन्ने कन्ने आज जेड़ा ऐसा दूध था तती दी मैं आइसक्रीम भी बनाई थी है ना तो क्या होया कि जेड़ी मैं लस्सी थी पहले सै पीती हाँ रोटी खाने ते पहले क्योंकि गर्मी भी बड़ी भरी है कने जालू रोटी खाधी हाँ तो आइसक्रीम भी खाधी अपनी बनाई हो तो बाकी जेड़ी लस्सी बची मैं बोतला च झोले च भरी कने मैं ट्याले पर ले आई क्योंकि ट्याले पर साढ़े होर साथी भी होंदे तां मैं बोलिया हाँ मिली के जेड़ी है लस्सी पींगे कने जेड़ी आइसक्रीम है सै भी मैं लेंदी कि हाँ मिली के जेड़े है सै खांगे तो घर च क्या होया कि घर च भी सारे जेड़ा है तिसदा आनंद लिया खूब मज़ा लिया लस्सिया दा कने आइसक्रीमा दा भी जेड़ा है सै खूब मज़ा लिया पर गल ऐसी है कि जालू अहां लस्सी पीती आइसक्रीम खाधी तो साढ़े शरीर जो जेड़ी है सै ठंडक महसूस हुई तो यह तो थी कि घर च अहां लस्सी बनाई कने आइसक्रीम बनाई कने साजो जेड़ी है सै ठंडक महसूस हुई पर हर कुसी वाल ना इतना समय है कि सै घर च बनाई सके तो क्या होंदा कि कई बार साजो जेड़ी है बाजारे ते भी कुछ एक चीज़ा लैना पौंदियां तो जालू अहां बाजारे ते कोई चीज़ लैंदे तो अहां जरूर दिखदे कि कंपनी कौन जेही है जियां कोई खरी कंपनी होना चाहिदी कोई सरकारी कंपनी होना चाहिदी है ना तो जिस ऐसी कंपनी होना चाहिए कि जिदा भरोसा है सांजो कि इन्हों का समान जेड़ा है साढ़े स्वास्थ्य ताई खरा है कने सांजो इन्नी कोई नुकसान नहीं पुजाना है तो तीएं ही जेड़ी है अहां कोई होर समान खरीददे हैं ता हाँ खरिया कंपनियां का ही खरीददे हैं कने तिस जो वरतदे हैं तो फिर जालू साड़ी है जमीना की सेहता की स्वास्थ्य की गल आउंदी तां भी अहां तीएं ही ध्यान रखना है कि अगर अहां जमीना का स्वास्थ्य ठीक रखगे रसायना का प्रयोग जड़ा ऐसा घट करगे तो तिस की सेहत भी जड़ी ऐसे ठीक रहनी है तो किसान भैनों वैसे तो तुहां दिखा काफ़ी समझदार हैं पर फिर भी जड़ा है साड़ा जालू अहां ट्याले पर आई आते तो एक जानकारी देना बनता है तो अहां सोचा कि अज जड़ी है इस जैविक खेती ने जुड़ी हो गलबात की जाए तो गलबात तो अहां विषय पर होर करनी है पर सब तो पहले सुनना है एक प्यारा जिहा लोक गीत तो वह सुनते लोक गीत

तवा फाड़ कर लिख लीजिए वाला अकबर माल।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: तो दिखा भैनों यही जिहड़ी है जैविक खेती है दी खूबसूरती है कि इस च असा रसायन नहीं पाने कने प्राकृतिक चीज़ा दा उपयोग करना है। ठीक है, तो असा इस कार्यक्रम दे माध्यम ने जानते हैं कि कियां हाँ अपने खेत, अपने पशु, अपने जीवन जो ज़्यादा स्वस्थ कने प्राकृतिक कियां बनाई सकते हैं। तो अहां रसायनिक खादा की जगह गोबर की खाद कने कंपोस्ट दा इस्तेमाल जिहड़ा सै करना है। नीम आधारित कीटनाशक जिहड़े हन सै अपनाने हन। फसल चक्कर जिहड़ा सै हाँ जरूर अपनाना है। फसल चक्कर दा मतलब ये हुंदा कि अहां अपने खेते च जिहड़ा हर साल एक ही फसल नहीं बाणी है। तो जालू भी अहां इस साल अगर मन्ना राजमा या फिर मूंग बाए हो अगले साल अहां जिहड़ी है सै अपनी फसल बदली के बाणी है। हर साल कुछ नवा बाणा है, तिसते क्या होना कि जमीना दी ताकत जिहड़ी है सै बनी रहनी है, मिट्टी कमजोर नहीं होनी है, कने फसल भी साड़ी जिहड़ी है सै खरी होनी है। इन्हां अहां छोटियां छोटियां गल्लां दा ध्यान रखगे तो अहां जिहड़ा सै खरा उत्पाद ले सकदे। तां अहां हुण फिरी चलना इक प्यारे जे लोक गीत दी तरफ।

0: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8.99 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8.99 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
5: दिक्खा बाजारे च जेहड़ी है साढ़े जैविक उत्पादों का खरा मुल मिलता है, कने लोकां जो जालू शुद्ध कने खरा बिना रसायना वाला समान मिलता है, तो सांझो भी मुल जेहड़ा ऐसा खरा मिलता है। तो दिक्खा जैविक खेती जो अहां जरूर अपनाना है, जैविक सब्जियां जेहड़ियां हैं या अनाज हैं तिन्हां दी बाजारे च काफ़ी मांग है, क्योंकि लोग जेहड़ा ऐसा ऑरगैनिक लैवल वालियां चीज़ां तोपी ने लेंदे हैं, कने ए आम ते महंगी हैं जड़ी हैं सै बिकदी हैं। दूध होए चाहे घ्यो होए या फिर शहद होए, जैविक चीज़ां दा अच्छा बाजार मुल जड़ा ऐसा मिलता है। इना दा उपयोग कजो बता दा है, कजो कि लोग सेहता जो लेके जड़ा ऐसा ज़्यादा जागरूक हैं, कने बीमारियां जड़ी हैं सै इदे कने घट होनी हैं, कने कने जड़ी हैं सै सांजो प्राकृतिक चीज़ां दे वखे तिना दा रुझान भी ऐसा ज़्यादा होता है। कने दिखा शहरां च भी जेहड़ा ऐसा जैविक उत्पादों की दुकाना कने ऑनलाइन बाजारां च भी मांग जेहड़ी ऐसा बड़ी है, कने लोग जेहड़े ऐसा जागरूक होआ दे, कने होना भी कहनी है, क्योंकि रसायना वालियां चीज़ां थोड़ियां सस्तियां होंदियां, कने जैविक जेहड़ियां ऐसा महंगी होंदियां, फिर भी मांग जेहड़ी ऐसा जैविक चीज़ां की है। जैविक बेशक महंगे होन पर सेहता ताईं खरे हैं। तो आखिर च जिहड़ी ऐसा मैं यही गलांदी है कि अहां सारियां जिहड़ा ऐसा जैविक दे बखे जिहड़ा ऐसा जरूर जाना है, कने उन्हां फिरी सुनना है एक लोक भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
3: U.S. Secretary of State Marco Rubio strongly underscored the strategic dimension of the partnership, describing India as one of the United States' most important partners in the world. Mr. Rubio arrived in India yesterday on a four-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting, which will be held on 26th of this month. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Dibangshu Panda has registered a landslide victory in the Trinamool Congress Baston Falta Assembly constituency. Mr. Panda won the seat by over 1,09,000 votes. Falta's seat was widely regarded as the stronghold of Trinamool Congress. Communist Party of India Marxist candidate Shambhunath Kurmi finished in second place with over 40,600 votes. Congress candidate Abdul Razak Mola came third, and Trinamool Congress candidate Jahangir Khan was pushed to the fourth position with over 7,700 votes. Election Commission had ordered a re-poll in Falta following allegations of large-scale malpractice during the polling of the West Bengal Assembly constituency elections. The re-polling was held on 21st of this month. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centres for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with the Ministry of Home Affairs MHA guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. The directive instructs the authorities to act as per the MHA framework on deportation and repatriation procedures for Bangladeshi nationals and Rohingyas found residing illegally in India. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology Madras and IIT Kanpur to assist the Central Board of Secondary Education, that is CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. This decision has been taken in view of the developments and concerns raised by the students and parents regarding the CBSE post-result services portal. A four-member medical team from the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Delhi, today conducted second autopsy of the former model-turned-actor Tushar Sharma in Bhopal. The post-mortem lasted nearly 3 hours under tight security arrangements. After completion of legal formalities, the body was handed over to the family and the last rites were performed at the Bhadbada Crematorium in Bhopal. At the Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, clinching 2 silver and 1 bronze medal in the women's freestyle events in Vietnam's Da Nang today. In the 50-kilogram category, Sweetie won silver after going down against local favourite Ngo Linh Do, 7-5 defeat in the gold medal match. And in IPL cricket, Rajasthan Royals have set a target of 206 runs against hosts Mumbai Indians at Wankhede Stadium. In reply, Mumbai Indians were 137 for 5 in 13.3 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
0: पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां।

0: किसान साथी आशा आशा करने कि यह प्यारा दे लोक गीत तुसां जो जरूर पसंद आए होना
1: जी।
0: और इस लोक गीत दे बाद उनाहा चलना अगली जानकारी दी तरफ ता सुनदे ने जानकारी
1: जी।
2: कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता की कड़ी विच जिया कि तुहां जो पता है हर दिन अहां दा प्रयास रहिंदा एक नित नोए ते नोए जानकारी अहां तुहां तक पुजाइए। मैं किसान मित्र अज अहां दे टियाले पर आए हो ना अज दे खास परौहणे जड़े कि हन डॉक्टर केर सिंह ठाकुर कन ए विज्ञानिक हन कृषि विज्ञान केंद्र चंबा च कार्यरत हन। तो डॉक्टर साहब जी टियाले पर तुहां दा बहुत बहुत स्वागत है जी।
3: धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका आभार।
2: तो डॉक्टर साहब जी गलबात करदे ने जिया कि अज का जरा अहां का विषय है सह है सुगंधित पौधे कने औषधीय पौधे की खेती जो करी के कियां अहां दे किसान साथी बागवान साथी अपनी आर्थिकी जो मजबूत बनाई पान। ता अहां दे सुनने वाले तुहां सबसे पहले ये दसा कि ये जड़े सुगंधित पौधे विच जड़े से कुण कुण पौधे आंदे कने औषधीय पौधे की श्रेणी च कुण कुण पौधे आंदे ने।
3: बिल्कुल, बड़ा बढ़िया तुहां प्रश्न किया। सारे ते पहले तो मैं तुहां ये दसना चाहता कि ये जड़े चाहे से औषधीय पौधे हो चाहे सुगंधित पौधे हो इन्हों का जिक्र आज ते नहीं है।
2: हाँ जी,
3: बड़े पुराने समय ते है कने यहाँ जेड़े ऋषि मुनि जेड़े थे सह इन जड़ी बूटियां ते ही दवाइयां बनाते थे कने यहाँ दा जेड़ा सह आदमी होन चाहे जानवर होन ते ना दा इलाज करते थे।
2: जी डॉक्टर साहब जी, तो हाँ बिल्कुल जेड़ा सह एक पते दी गल जेड़ी से दसी है कि पुराने समय च दिखा अज दी यहाँ गल करन दा कितनी सारियां मशीनां आई हैं चाहे वहां दे एक्सरे होने सीटी स्कैन होने या होर, लेकिन उस जमाने च दिखा एक वैद नाड़ी दिखी के दसीन दे कि तुहां जो ए बीमारी है अगर तुहां ए खाद
3: आयुर्वेदा है, आयुर्वेद दे जेड़े प्रोडक्ट या जड़ी बूटियां इसका इस्तेमाल होंदा।
2: हां जी,
3: कने सारे ते बड़ी हैरानी दी गल है कि अज दे समय पर भी ज्यादातर जेड़ी यहां दी जड़ी बूटियां है ना सह जंगले ते आउंदियां।
2: बिल्कुल
3: ठीक है।
2: हां जी,
3: तेना दा अगर तुहां देखन ता वैज्ञानिक तौर पर सह जेड़ी जड़ी बूटियां है ना सह हाले भी यहां दे जेड़े किसान बागवान भाई जेड़े से अपनी जमीन पर नहीं उगा दे। ता सारे ते पहला प्रश्न जेड़ा सह यही है कि भई किसान जो कियां जे तेना अगे लान कने तेना प्रोत्साहित करन कि भई तुहां अगे आ कने इन चीजा दी खेती बाड़ी करा कने ए भी इक जेड़ा तुहां दा अतिरिक्त आय दा जेड़ा साधन है से बनी सकदा है।
2: हां जी,
3: समय समय पर ए नहीं है कि सरकारा प्रयास नहीं करा दी या जेड़े अहां दे विश्वविद्यालय से प्रयास नहीं करा दे, प्रयास हर तरफ ते होंदा
2: जी,
3: पर कुथी ना कुथी जेड़ा से गैप रही जांदा कुथी ना कुथी अहां दी कमजोरी रही जांदी तिस दी वजह ते जेड़ा अहां तिस चीजा जेड़े से अगे नहीं लैन जांदे।
2: हां जी,
3: हुण मैं तुहां दसना चाहंदा कि अगर तुहां सरकारी तौर पर भी अगर कोशिश करना ता पूरे हिंदुस्तान च गल करना ता कम से कम 100 जेड़ी जड़ी बूटियां दे ही है ना कि जेड़े बड़े बड़ी ज्यादा जरूरत जिन्हां दी आयुर्वेद च होंदी।
2: बिल्कुल,
3: ठीक है। कने जेड़ा अहां दा राष्ट्रीय जेड़ा पादप बोर्ड है इसका सह हो चाहे अहां दा इत्थों दा राज्य सरकार पर जेड़ा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है तेना भी कुछ जेड़ी अहां दी प्रजातियां से चिन्हित कीतियां कि ए जेड़ी ज्यादा बिकने वाली ज्यादा व्यापार इन्हां दा होंदा कने इन्हां इन्हां जेड़ी जड़ी बूटियां है इन्हां जो तुहां उगा कने इस ते जेड़ा से तुहां ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकदा। ता 100 जेड़ा मैं तुहां दसा दा कि पूरे भारत वर्ष च 100 जेड़ी प्रजातियां जड़ी बूटियां दे सहित दे ने कि जिन्हां दा व्यापार विच ज्यादा ते ज्यादा जेड़ा महत्व है
2: जी,
3: कने तिन्हां विच 32 जेड़ी प्रजातियां ने से हिमाचल च हो सकदियां पैदा
2: जी। दिखा भाई इस ते जेड़ी से बेहतर गल और क्या हो सकदी है कि इतनियां प्रजातियां जेड़ी से अहां दे हिमाचल विच जेड़ियां से उगाई जा सकदियां ने।
3: बिल्कुल बिल्कुल, सारे ते बड़ी बढ़िया गल अहां दी हिमाचल प्रदेश दी है कि हिमाचल दे प्रदेश जेड़ा से बड़ा खूबसूरत अहां दा प्रदेश है कने हिमालय दी गोद दे च बसया से।
2: बिल्कुल,
3: कने जलवायु इत्थू दी इतनी अनुकूल है जेड़ी भी अहां कोई गल करा दे कि जड़ बूटियां ते इस वास्ते चाहे इत्थू दी मिट्टी होए चाहे इत्थू दा तुहां दा जलवायु होए जेड़े आवा हवा है
2: से
3: सारी अनुकूल है
2: जी।
3: पर कोशिश जेड़ी है से सिर्फ जरूरत क्या है, जरूरत यही है कि अहां जो क्षेत्र दे हिसाब पर अहां कुछ कुछ जेड़ी चीजन से जड़ी बूटियां से अहां चिन्हित करना पौनी तिना पर काम करने की जरूरत है
2: जी। जियां सुगंधित पौधों के उपर अहां गलबात करा करते हैं सोगी औषधीय पौधों के उपर, ता अगर सुगंधित पौधों की गल करिए डॉक्टर साहब तो जियां कि रात राणी होई गुलाब है लेमन ग्रास होई या तो ये इसके अलावा जियां पुदीना होई या पावड़ी होई ये भी क्या सुगंधित पौधों की श्रेणी ਸੀ ਹੁੰਦੇ
3: ਇਹ ਦੋਨੋ ਦੋਨੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਕਹਿੰਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਦੇ ਸੌਖੀ ਸੌਖੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤੇਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਗਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਹੈ
2: ਜੀ ਜੀ
3: ਸਹਿ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪੌਦਾ ਹੈ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਫਿਰ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਲਵੈਂਡਰ ਆਈ ਗਿਆ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਜਰੇਨੀਅਮ ਆਈ ਗਿਆ
2: ਹਾਂਜੀ ਮਧੂ ਕਾਮਿਨੀ
3: ਹਾਂ ਮਧੂ ਕਾਮਿਨੀ ਬੈਬੂਣਾ ਆਈ ਗਿਆ
2: ਜੀ ਜੀ
3: ਫਿਰ ਤੁਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਲਡ ਮੈਰੀ ਗੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲੀ ਗੈਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਤੌਰ ਪਰ ਹੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੰਗਲ ਇਹ ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇੱਕੋ ਦਿੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬਈ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਚ ਕਰਦੇ
2: ਹਨਾ
3: ਇਹ ਨੀ ਬੋਲੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਕੋਪ ਨੀ ਹੈ
2: ਹਾਂ
3: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਾਂ ਦੇ ਪਵਨ ਜੀ ਹਨ ਬਟਿਆਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ
2: ਅੱਛਾ
3: ਤੇ ਨਾ ਆਪੂ ਸੋ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਢਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪੂ ਕਨੇ ਜੋੜਿਓ ਨਾ
2: ਹਾਂਜੀ ਢਾਈ

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत कन्नै कार्यक्रम किसान बाणी इत्थों संपन्न हो करदा। कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रिहा विकास पठानिया,
1: कन्नै प्रस्तुत करता जितेंद्र पाल सिंह। उन सांझो दोनों जदिया अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 MHz पर। शाम के 7:42 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए प्रचार थमा, 26 मई को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। भाजपा का आरोप, नगर निकाय व पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास कर रही कांग्रेस सरकार। राज्यपाल

0: 1293 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 28 मई जबकि तीसरे चरण में 30 मई को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश भर में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान के सुचारू संचालन के लिए कुल 8,198 मतदान दल गठित किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं और आज ही वे अपने केंद्रों में पहुंच जाएंगे। आयोग ने सभी मतदाताओं से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहने की अपील की है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे जिनका नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल होगा। प्रदेश भर में मतदान प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच पहले चरण के मतदान के लिए चंबा जिले की 118, ऊना जिले की 86, हमीरपुर जिले में 83, कुल्लू जिले में 84 जबकि लाहौल स्पीति जिले में 12 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पहले चरण में बिलासपुर जिले की 62 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। चंबा जिले के जनजातीय पांगी उपमंडल की 19 पंचायतों में 26 और 28 मई को मतदान होना है। इन चुनावों के लिए पांगी के आवासीय आयुक्त अमनदीप सिंह ने पोलिंग टीमों को चुनाव सामग्री के साथ आज संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया। पांगी उपमंडल में कुल 52 पोलिंग टीमें विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए भेजी गई हैं जबकि 10 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। आवासीय आयुक्त ने मतदान दलों को आपसी समन्वय और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। लाहौल स्पीति जिले में पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा के 71 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार इस्तीफे का मुख्य कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी सहित जिला भाजपा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को माना जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले लाहौल स्पीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है जबकि अन्य दलों से आए लोगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस सामूहिक इस्तीफे के बाद लाहौल स्पीति की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि इसका असर पंचायत चुनावों के साथ आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले पर पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार नगर पंचायत व पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा है कि प्रशासनिक व राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से जनादेश को प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही हैं जो लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान की भावनाओं के विरुद्ध है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा कल 25 मई को शिमला स्थित लोकभवन में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगी। पार्टी नेताओं के अनुसार आदर्श आचार संहिता के दौरान हुई मंत्रिमंडल बैठक और चुनाव प्रभावित करने वाले फैसलों पर भी सवाल उठाए जाएंगे। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों से राज्य में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। वे आज हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जिला परिषद वार्डों से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान मिल रहे जनसमर्थन से ये स्पष्ट है कि पूरे हमीरपुर जिले में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है। सिकंदर कुमार ने कहा कि कांग्रेस की नाकामी और जन विरोधी रवैये के खिलाफ लोगों में भारी रोष है जिसका नतीजा चुनावों में साफ दिखेगा। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। शिमला में एक निजी रेडियो चैनल द्वारा आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर है और इस यात्रा में मीडिया, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों सहित युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा कि छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा में

0: योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। राज्यपाल ने युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन पर चिंता जताते हुए इसे समाज और नैतिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया नशा मुक्ति अभियान में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। प्रदेश भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 28 पदाधिकारियों को संगठनात्मक दायित्वों से मुक्त कर दिया है। ये कार्रवाई जिला परिषद चुनावों में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर की गई है। भाजपा द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखने और कार्यकर्ताओं में स्पष्ट संकेत देने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से संगठन की विचारधारा, अनुशासन व अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में कार्य करने का आह्वान किया है। स्वास्थ्य विभाग ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान के तहत आज बिलासपुर में विशेष शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 41 बेटियों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि अभियान के अगले चरण के तहत 31 मई को भी बिलासपुर जिले के 30 चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में शिविर लगाए जाएंगे ताकि छूटी हुई पात्र बालिकाओं को टीकाकरण का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ये टीकाकरण को भविष्य में सर्विकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। हमीरपुर जिले में भी 20 बालिकाओं का टीकाकरण किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा नाहन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज विवेक कालिया ने बताया कि मानवता के कल्याण और जरूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से मिशन द्वारा समय समय पर इस तरह के रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं।
1: मिशन का संदेश है कि रक्त नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बहे, ये इंसान को एक जीवन दान दे, इंसान को एक सुरक्षा प्रदान करे। इसी मानवता के भाव को लेकर ये मिशन के अनुयायी यहाँ रक्तदान शिविर कर रहे हैं और बरसों बरस से ये रक्तदान शिविर करते आ रहे हैं। अभी तक कुल 7500 ब्लड डोनेशन के कैंप पूरे भारत वर्ष में लग चुके हैं और तकरीबन 15 लाख यूनिट से ऊपर का रक्तदान मिशन द्वारा किया जा चुका है, जो एक मानवता के लिए मिशन की तरफ से सराहनीय योगदान है।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर को एक बार फिर प्रतिष्ठित संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान उनकी अध्यक्षता वाली कोयला, स्टील व खान संसदीय स्थायी समिति के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। अनुराग ठाकुर को वर्ष 2019 में भी लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षाएं 18 जून से 27 जून तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का आयोजन शिमला स्थित राजकीय महाविद्यालय संजौली में किया जाएगा। परीक्षा की संशोधित समय सारिणी डॉ मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए प्रचार थमा। 26 मई को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। भाजपा का आरोप, नगर निकाय व पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास कर रही कांग्रेस सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। और भाजपा ने 28 पदाधिकारियों को संगठनात्मक दायित्वों से किया मुक्त। जिला परिषद चुनावों में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर हुई कार्रवाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं समूह स्वरों में देशगान।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

सभी श्रोताओं को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवा रहे हैं पंकज उदास और साधना सरगम की आवाजों में ये गजल।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में गाए इस गज़ल के साथ आज का सबरस कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:15 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिम बीट्स रिले किया जाएगा।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस।

0: सबरस कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 8:30 हुए हैं। डीजे प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।
1: पापा के बर्थडे का

0: आप सुन रही थी देश कान। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई

0: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
0: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: Importer of energy and much of it comes from that region.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालु नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy, trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility

श्रोताओ, अनुराग बसु ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1990 के दशक के मध्य में टीवी धारावाहिकों से की थी और उन्होंने तारा, सैटरडे सस्पेंस और हॉरर शो जैसे कई लोकप्रिय टीवी शोज के लिए 1100 से भी अधिक एपिसोड्स का निर्देशन किया था और टीवी में अपार सफलता के बाद उन्होंने वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत में फिल्मों की ओर रुख किया। उनकी शुरुआती फिल्में कुछ तो है से बॉलीवुड निर्देशन की उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन उनको असली पहचान फिल्म मर्डर से, जो कि वर्ष 2004 में आई थी, और साया जैसी थ्रिलर फिल्मों से उनको पहचान मिली थी। तो आइए सुनवाते हैं उन्हीं की फिल्म से एक और गीत।

उनकी सफल फिल्मों में से गैंगस्टर वर्ष 2006 में आई थी, और लाइफ इन अ मेट्रो वर्ष 2007 में, और काइट्स फिल्म जो है वो वर्ष 2010 में आई थी। और ये फिल्में जो हैं वो समीक्षकों के द्वारा भी सराही गई और सफल फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया था। और इसके बाद उनकी सबसे प्रशंसित फिल्मों में से बर्फी और लूडो जो हैं वो फिल्में शामिल हैं जिनमें उनके निर्देशन की काफ़ी तारीफ हुई थी। तो आइए सुनवाते हैं आपको उन्हीं की फिल्म से एक और गीत।

0: श्रोतो, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सुन रहे थे कार्यक्रम में एक ही कलाकार। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: एक लड़की कल मिली थी, मिल जाए आज फिर तो मैं उससे खुल के दिल की बात करूं।
0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद अजीज और एस जानकी की आवाजों में गाए गरीबों का दाता फिल्म से इस गीत के साथ।

0: अरे तौबा, क्या करती हो
1: तुम? ये बताओ, तुमसे वो मिलेगी तो तुम क्या करोगे?

शब्बीर कुमार और अलका याग्निक को आप सुन रहे थे फिल्म मोहब्बत की कसम में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुमराह से, जिसे गाया है रूप कुमार राठौड़ ने।

लव के चक्कर में लीजिए इस फिल्म में सुनते हैं शान और अलका याग्निक को। गीत लिखा है समीर ने और धुन बनाई है दबू मलिक ने।

0: फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 10 बजने को हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रविवार स्तरीय संगीत सभा रिले की जाएगी।
1: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांत दे रॉय।
2: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Hauroshankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Muralidas Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hauroshankar Bhattacharya moved to Bombay, present day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hauroshankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Zafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hauroshankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hauroshankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by प्रशांत दे रॉय।
1: पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
2: पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी। बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़, द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal followed by madhyalaya teen tal।

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

0: 3.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
5: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
4: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid al-Zuha, that is Bakrid holiday, as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12th board examinations by one more day until tomorrow. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit their applications accordingly. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology, that is IIT Madras and IIT Kanpur, to assist the Central Board of Secondary Education, CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. The decision has been taken in view of the developments and concerns raised by students and parents regarding the CBSE post-result services portal. In Karnataka, 8 members of a family, including 7 women, drowned in the Thatte Hakalu River in Uttara Kannada district today. The mishap occurred when they were collecting freshwater mussels and were swept away by strong currents. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the incident. Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. Chief Minister Siddaramaiah also announced an ex gratia of 5 lakh rupees for the next of kin of each deceased. The India Meteorological Department, that is IMD, has forecast that severe heat wave conditions are likely to persist over central and northwest India for the next 7 days. The weather agency also issued a red alert for severe heat wave conditions over east Uttar Pradesh, east Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. At the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, securing 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam's Da Nang today. And that is the end of this news bulletin.
0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रमों का प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। कल के कार्यक्रमों के साथ 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।